श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ

सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई

0: गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। वंदन वार
2: विविध भारती।

आज का सुविचार हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। मुस्कुरा कर उठिए क्योंकि खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर और शाम को पुनः 6:35 पर आप जी माफ कीजिएगा 6:35 पर प्रसारित किया जाएगा श्री रामचरित मानस गान, जिसका भाग 193 प्रसारित होगा। 6:45 पर संगीत सरिता, जिसका पुनः प्रसारण शाम को 6:45 पर आप सुनते हैं, जिसके अंतर्गत श्रृंखला आप सुन रहे हैं एसी लागी लगन, कलाकार गायक अनूप जलोटा, इसका भाग 8 आप सुनेंगे। सुबह 7 आप सुनते हैं पुराने गीतों के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, हम है राही प्यार की। ये कार्यक्रम 7:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2 सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 9:30 पर और पुनः रात को 9:30 पर आज के फनकार, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहतनामा, प्रोटीन और विटामिन का महत्व, इस विषय पर डॉक्टर मीनल शाह से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत, प्रस्तुति रामकरण मीणा, प्रसारण का समय सुबह 10। रंग तरंग ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11। 12:05 पर यादों की महफिल सजाई जाएगी। दोपहर 1 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। दो बजकर 30 पर सदाबहार नगमे। 3 कार्यक्रम सखी सहेली के अंतर्गत इन कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होगी। अपराध बोध से बचना जरूरी, मुहावरों की दुनिया, आंखों का तारा होना, उद्यमी महिला कल्पना सरोज की बातें होंगी। बातें हल्की फुल्की, परीक्षा परिणाम पर कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलाइट के सितारे ये आप सुनेंगे। पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति शकुंतला पंडित की है। शाम 5 छाया गीत। 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:30 पर झरोक।

6:35 पर संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जय माला आप सुनेंगी शाम 7 बजे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिएगा पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटिका प्रेम दीवाना। लेखन ब्रजभूषण का है, निर्देशक पुरुषोत्तम दार्वेकर। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर ममता सिंह का। 10:30 पर सुनिएगा ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का भाग 193।

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती राम विरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आघाते।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में आज सुरों की वर्षा हो रही है। हमारे साथ हैं अनूप जलोटा जी, आपका हम स्वागत कर रहे हैं।
2: धन्यवाद।
1: भजन के सुरीले संसार से परिचय करा रहे हैं अनूप जलोटा जी, और हम आज उनसे जानना चाहते हैं कि उनके तमाम भजन लोग पसंद करते हैं, गुनगुनाते हैं, गाते हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि उन्हें किन गायकों के गाए भजन पसंद आते हैं, और उन गायकों के बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को, उनके गाए भजन गा के हमें सुनाएं।
2: भजन सबने गाए हैं, ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसने भजन ना गाए हो। और अब तो ये भी सिद्ध हो गया कि जो भजन है वो शास्त्रीय गायन का एक अंग है, क्योंकि जितने भी शास्त्रीय गायक हैं वो बंदिश गाने के बाद में आखिर में भजन जरूर गाते हैं, चाहे वो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर हों, चाहे डीवी पलुस्कर जी हों, चाहे पंडित जसराज जी हों, या भीमसेन जोशी जी हों, या किशोरी आमोनकर जी हों, सब भजन गाते हैं। गजल कोई नहीं गाता अपने प्रोग्राम के एंड में। इसका मतलब गजल जो है वो क्लासिकल म्यूजिक का अंग नहीं है
1: जी।
2: लेकिन भजन है, नहीं तो कोई ना गाता, लेकिन सभी गाते हैं। तो भजन डीवी पलुस्कर जी ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो आज तक लोग गा रहे हैं।

0: भीमसेन जोशी जी, उनके भजन गांव-गांव में गाए जाते हैं
1: जी।
0: लोग अपने कार्यक्रम को उनके भजन से ही समापन करना पसंद करते हैं।

एक ऐसे कंपोजर जिन्होंने बड़े सुंदर भजन सबसे गवाए, श्याम तेरी बंसी, रविंद्र जैन जी।

तो ऐसे कोई गायक हैं ही नहीं जिन्होंने भजन अंग को न छुआ हो। इतने प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह साहब जिन्होंने गजलों को अमर कर दिया, उन्होंने जब भजन गाए तो सबका दिल जीत लिया।

0: क्या बात है, बहुत सुंदर। बस आंखें बंद करके सुनते रहें और अनूप जलोटा जी हमें भजन सुनाते रहें, बस ऐसे ही लग रहा है। एक सवाल मेरे जहन में आया जब मैं ध्यान से सुन रही थी। नई पीढ़ी एक अलग तरह के संगीत और संस्कृति में गुम है, ऐसा क्या किया जाए? अनूप जी आप बताएं कि भजन की ओर उनका रुझान हो, उन्मुख हो।
1: बस ऐसे भजन गाए जाएं, ऐसी लागी लगन जैसे।
0: क्या बात है।
1: हे राम जैसे, शाम तेरी बंसी जैसे, तो यंग जनरेशन सुनने लगेगी। लेकिन बहुत मुश्किल गाएंगे तो नहीं सुनेंगे लोग। तो कोशिश यही की जाए कि सरलता सुगमता सामने आ जाए तो सब उसे प्रेम करेंगे
0: जी। अब अनूप जी चलते चलते आपकी किसी भजन का मुखड़ा हमें सुनाएं।

0: राम नाम अति मीठा है। अनूप जी, आपके गायकी के माध्यम से हमारे श्रोता अपनी आंखों से देख रहे हैं ये चित्र, आपके शब्द चित्र के जरिए। और अब वही घड़ी आ गई है जब हम समापन करते हैं, तो अब यहीं पे समाप्त करते हैं ये कड़ी। कल फिर मिलेंगे संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ। सबको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार जी। ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी।

0: की खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। मैं पूजा नारायणिया, आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, मन में नाचे मन की उमंगे। बेकसूर फिल्म से ये गीत है, आवाज लता मंगेशकर की है, एहसान रिजवी के बोल, अनिल बिस्वास का संगीत।

बेकसूर फिल्म से अभी लता मंगेशकर की आवाज में आपने गीत सुना। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं नदिया के पार फिल्म से। गीतकार हैं मोती, संगीतकार सी रामचंद्र, आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर की। सुनिए ये गीत।

0: लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में आपने सुना नदिया के पार फिल्म का ये गीत। लीजिए अब सुनिए ये संदेश।
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुक्रिया, शुक्रिया।
2: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम का गाया गीत। शकील बदायूनी के बोल हैं, तर्ज बनाई है नौशाद अली ने। फिल्म का नाम मेला।

मेला फिल्म से शमशाद बेगम का गाया गीत आपने सुना। अब सुनिए कमल के फूल फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, श्याम सुंदर का संगीत, और इस गीत को गाया है सुरैया ने।

कमल की फूल फिल्म से सुरैया की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं सरगम फिल्म का गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर और चितलकर ने। पीएल संतोषी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है श्री रामचंद्र ने।

0: सरगम फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में पीएल संतोषी का लिखा गीत था और सी रामचंद्र का संगीत।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
4: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं उमा देवी की आवाज में अनोखी अदा इस फिल्म से। ये गीत जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीतकार हैं नौशाद अली।

ये गीत था उमा देवी की आवाज में अनोखी अदा फिल्म से। अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आग से, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये गीत। इस गीत को लिखा है बहजाद लखनवी ने और संगीतबद्ध किया है राम गांगुली ने।

मुखड़ा सब बोले हाय राम, होए होए सब बोले हाय राम, हाय हाय सब बोले हाय राम, हाय हाय सब बोले हाय राम। सबकी लागी पे नजरिया सोला बरस की भई उमरिया, सोला बरस की भई उमरिया, सोला बरस की।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आग से शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में। अब आपको सुनवा रहे हैं बाबुल फिल्म का गीत। इसे गाया है शमशाद बेगम ने, शकील बदायूनी के बोल हैं, संगीतकार नौशाद अली।

बाबुल फिल्म से शमशाद बेगम का गाया गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीतबद्ध किया था नौशाद अली ने। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम हिराही प्यार के लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

श्रोताओं, आप सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के में। आइए आपको सुनवाते हैं ये पहला गीत, तपस्या फिल्म से किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में। एमजी हशमत ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने।

0: तपस्या फिल्म से किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में आपने गीत सुना। अब आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए आपको अब सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में गुलजार का लिखा गीत आर डी बर्मन का संगीत बद किया आंधी फिल्म से।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कह रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

आंधी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजों में। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और भूपिंदर का गाया गीत फिल्म किनारा से गुलजार के बोल, संगीत आजी बर्मन का।

हम ही राही प्यार के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुना अंतराल, और अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत अदालत फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, तर्ज बनाई है मदन मोहन ने।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम हम हैं राही प्यार की। आइए अब आपको सुनवाते हैं वारंट फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल, आरजी बर्मन का संगीत।

0: फिल्म वारंट से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना। आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

हम ही राही प्यार किए की आखिरी प्रस्तुति हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में एमजी हशमत का लिखा गीत है। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम उलझन।

उलझन फिल्म से किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। एमजी हशमत का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के अब यहीं संपन्न होता है।

0: प्रातः के 8 बजे का समय होने जा रहा है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
2: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
3: Recognizing the ambitious
4: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाजरानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
3: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से

0: हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के

0: व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
2: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
6: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री

0: अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमेरिका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी परदेश पर आधारित है। हम सभी परिवार के लोग सदियों से बेहतर जीवन, शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय की तलाश में अपने घर, परिवार और देश को छोड़कर परदेश जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है परदेश में अच्छा अवसर मिलेगा और मिलता भी है। आकर्षक अवसरों के द्वार खुल जाते हैं, हम अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र चुन सकते हैं। इसके साथ ही परदेश में जीवन की राहें आसान नहीं होती, कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बाहर से सब कुछ वैभवशाली चमक दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में परदेश का जीवन कई चुनौतियों से भरा होता है, जहाँ की भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद झेलनी पड़ती है।

कि परदेश में रहकर हम कितना भी घर बना ले, तरक्की कर ले, ऐशो आराम का जीवन बिता ले, कहलाते तो हम परदेसी ही हैं। वहीं अपने परिवार से दूरी, अपनों से दूरी, मित्र परिचितों से दूर रहना सबसे कष्टकारी होता है। कई मांगलिक कार्यक्रमों, उत्सवों, त्योहारों, खुशी और गमों के मौके पर ना पहुंच पाने का दुख हृदय को पीड़ा दे जाता है। परदेश का अकेलापन और घर की याद व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर करती रहती है। लोग तो यही उलाहना देते हैं कि परदेश जाकर भूल गया, लेकिन सच मानिए हकीकत कुछ और होती है। दौड़ भाग की जिंदगी में वापस लौटना संभव नहीं हो पाता। अगर वापस गए भी तो वहाँ सब कुछ बदला सा मिलता है।

प्रदेश में रोजगार और आर्थिक दबाव के तले जिंदगी पिसकर रह जाती है। किराए का घर, खर्च की अधिकता, नौकरी की अस्थिरता, वीजा संबंधी नियम और कानूनी प्रक्रियाएं तनाव बढ़ाती हैं। कई बार प्रदेश में योग्यता के अनुसार कार्य क्षेत्र में समझौता भी करना पड़ता है। इससे आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंचती है। समय लगता है, मित्र भी बनते हैं, मगर कहीं ना कहीं परदेश में अकेलापन लगता ही है। वैसे तो परदेश का जीवन व्यक्ति को आत्मनिर्भर, सहनशील और

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से। बस थोड़ा सा इंतजार, कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस अभी हाजिर हुए।

लीजिए हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। सुप्रभात श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में मंगल कामनाओं के साथ। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम और आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत। मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म से आवाज केके की है। देव कोहली ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

लड़का ये कहता है, ये गीत अभी आपने सुना केके की आवाज में, फिल्म का नाम था मैं प्रेम की दीवानी हूं। अगला गीत फिल्म सपने से, हेमा सरदेसाई और मलेशिया वासुदेवन की आवाज में, जावेद अख्तर की बोल, ए आर रहमान का संगीत।

0: सपने फिल्म से हेमा सरदेसाई और मलेशिया वासुदेवन की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। अब सुनिए ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी विविध भारती सुनने वालों का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं विक्की डोनर फिल्म से ये गीत। इसे गाया है विशाल डडलानी और सुनिधि चौहान ने। स्वानंद किरकिरे ने इसके बोल लिखे हैं और संगीत दिया है डॉन एंड बैन ने।

विकी डॉनर इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, विशाल टडलानी और सुनिधि चौहान की आवाजों में। क्या सुपर कूल हैं हम इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत, सोनू निगम और मीट ब्रदर्स अनजान के स्वरों में। कुमार का लिखा गीत, मीट ब्रदर्स अनजान का संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और आइए अब आपको सुनवाते हैं तेरी मेरी कहानी फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है वाजिद अली ने, प्रसून जोशी का लिखा गीत है, संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

वाजिद अली के आवाज में तेरी मेरी कहानी फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। और इसी गीत के साथ अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटे से अंतराल का। आप कहीं नहीं जाइएगा, हम बस अभी लौटते हैं।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से। अन्विता दत्त ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है विशाल शेखर ने। शेखर रविजयानी और सलीम मर्चेंट साथ ही नीति मोहन की आवाजें हैं।

0: सन ऑफ सरदार, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में। समीर अनजान के बोल थे, तर्ज बनाई थी हिमेश रेशमिया ने।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में एक था टाइगर फिल्म से ये गीत। कौसर मुनि ने इसको लिखा है और संगीत दिया है सोहेल सेन ने।

एक था टाइगर, इस फिल्म से आपने अभी ये गीत सुना, तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में। और अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम जिजुलोक में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी इस फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत है, धुन बनाई है जीत गांगुली ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जब तक है जान फिल्म से श्रेया घोषाल और मोहित चौहान का गाया गीत। गुलजार ने इस गीत के बोल लिखे हैं और धुन बनाई है AR रहमान ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

राउडी राठौर फिल्म से श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया गीत आपने सुना, समीर के बोलते साजिद वाजिद का संगीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, आपको बता दें कि 9:30 पर सुबह यानी अब से कुछ ही देर में और पुनः रात को 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। कार्यक्रम सुनना नहीं भूलिएगा आज के फनकार। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम बस कुछ ही पलों के बाद।
1: The noble profession of nursing, where every day brings the opportunity to make a difference.
2: GNM, ANM, paramedical, BSc nursing, lab technician, जैसे courses के लिए आज ही join करें Chandni School of Nursing and Chandni College of Nursing, Vikas Nagar, Kanpur.
3: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
4: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
3: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले, पार्श्व गायक

0: ने संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो के सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

0: आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।
1: एक

उनकी जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुंचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था, वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एनएसडी के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक, अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपने फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जाने। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स ऑफ

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

वो समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किक में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें

नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डे फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं।

कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनकी मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूँगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है।
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज़ जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन इनटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज़ अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज़ का जो एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज़ पे, तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज़ ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में ज़रूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो, तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो, पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज़्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी, प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताओगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स, एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊंगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर, जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ
0: जी।
1: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
0: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
1: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, और ये सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं, और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है। तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी, ये वो चीजें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीजें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धानिया जो बेसिकली हमारे है, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
0: जिसमें आम भाषा में या गांव में कई इसको कठोर कहा जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धानिया जैसे हम बताते हैं, ये जो प्रोटीन है, इस ये बहुत जरूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, कुछ चीजें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके लिए हमें उसके फायदे ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज हम कॉम्बिनेशन में, जैसे बताए, दो चीजें साथ में ले ले, तो ये कंप्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी खिचड़ी।
0: अच्छा।
1: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं, या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि अनाज और कड़धान्या दोनों साथ में आए हैं। तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने जमाने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है, और हमें कुछ चीजें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेस, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
0: अच्छा।
1: तो पहला अगर मैं देखूं तो

दूध और दूध के पदार्थ है यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है, और तीसरा है जो मेरे कड़धान्य है जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊं तो वो उतने

0: दूध और इसकी जो
1: सिमिलरिटी है।
0: हाँ जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
1: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
0: हम नहीं बदलेंगे गोलमाल अगेन से।
1: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या-क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले, हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की जहाँ तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का ज़माना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो ज़रूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीज़ें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज़ हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदें मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का जमाना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट में सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें

0: बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की जरूरत नहीं है, हम वो चीज़ घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
1: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
0: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज़्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज़ गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
1: अच्छा,
0: तो कच्चे है तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज़ है वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाफ देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फ़ायदे तो होते हैं, प्रोटीन ज़रूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है, कई बार ये मिथ है या सच है, कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
0: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है, लेकिन ये बात सच है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पर जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन नुकसान करता है,
1: वो कौन सी हैं?
0: जैसे किडनी की डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
1: बतौर एक आहार विशेषज्ञ, आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
0: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे उनकी किडनियाँ काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज़ परहेज नहीं करनी है।
1: प्रोटीन ले सकते हैं?
0: बिल्कुल ले सकते हैं, और ज़रूरी है वो ले, ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना ज़रूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज़्यादा नुकसान होगा। उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे। इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं कि
1: बीज वाले बंद कर दीजिए, टमाटर बंद कर दीजिए,
0: बीज वाली चीजें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
1: जी जी, व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
0: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है, आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए?
0: ये वादा रहा, इस मूवी से ये वादा रहा
1: टाइटल सॉन्ग सुनना है आपको?
0: जी बिल्कुल,
1: ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था।
0: राइट।
1: हम सुनवा रहे हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है। वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो।
0: अच्छा।
1: वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ, वो लोड हो जाता है एक टाइम पे कि इतना सारा पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा।
0: ओहो, हैवी हो जाएगा।
1: बिल्कुल, वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक ग्लास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो पॉसिबल भी है, और वो तब शरीर ज्यादा आसानी से यूज कर पाएगा। शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है, और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं, सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीजें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीजों की एक साथ जरूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
0: जी जी जी, तो इसका मतलब ये प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके, विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
1: और एक सिर्फ छोटी सी चीज ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाए, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहां पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की जरूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
0: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें, और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें, और शाम को जो मिला खा लें, तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
1: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से, तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा।

0: मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो, शाम को चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना है।
1: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में, इसका डिटेल बताइए आप।
0: ज़्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी ज़रूरत है उतनी खाएं तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
1: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
0: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रोटीन कम करने की ज़रूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है। तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहाँ पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है। ये जितना वो प्रोटीन ज्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है, जैसे मैंने बताया, किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीजेज जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है,
1: सीरम क्रिएटिनिन,
0: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। पर अगेन, बहुत कम नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
1: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है।
1: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से?
0: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से। आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
1: जी जी जी भैया, बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
0: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
1: जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व। और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं,
1: जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए जरूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन्स है वो है फैट सोल्युबल विटामिन्स। तो ये विटामिन्स के लिए जरूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखे खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
0: अच्छा।
1: तो ये हमें रेगुलरली लेना जरूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज के रोज लेना है।
0: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है। लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी जरूरी है?
1: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए और इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वॉक में रहते हैं पैटर्न में, एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये जरूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट जरूरी है।
0: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं?
1: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग सोर्सेस है और ऐसे

0: जरूरी नहीं है कि एक चीज से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफी सारे खाने की चीजें ऐसी है
1: जैसे
0: जैसे फल हो गए, जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं। ठीक है, आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही जरूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये एक चीज कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे हैं वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है, क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। वो जो रीज़न है प्रोटीन खाने का, वो रीज़न नहीं हो पाता है कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं। जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है।
1: जैसे ऑरेंज है,
0: जैसे ऑरेंज है, जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है। मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है। और अगर मैं सब्जियां लूं तो जितनी कलरफुल सब्जियां ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे हमें। जितनी ज्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज्यादा विटामिन्स हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो जरूरी बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स आप ग्रहण कर रहे हैं।
1: बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहतनामा कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है, फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
0: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल मूवी से
1: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब मेरी आंखें ड्राई हो रही है या कमज़ोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: या धुंधलापन
1: वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोल्युबल सोर्सेज है तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
0: जी जी।
1: दूसरा विटामिन जो बहुत ज़रूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोल्युबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है।
0: इसका क्या काम होता है?
1: ये ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत, और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सीजन है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शन आ सकते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज़ बन जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे।
0: जी।
1: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है।
0: जी।
1: ये मेजर सोर्सेस है, इसके अलावा भी काफी सारे हैं बट ये तो ज्यादा जरूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इंप्रूव करता है,
0: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है।
1: जी। और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है। तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीजों में रहती है जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
0: है,
1: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी 1% ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज़

0: देखी जाए तो मिर्ची,
1: ओहो
0: मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, हरी मिर्च में। तो ये चीजें है हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे।
1: जी जी और देखिए आहार जो आपने बताया है कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियाँ होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज़्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा।
0: जी ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या ना दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए।
1: अच्छा।
0: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं होता है। और रही बात फैट सोल्यूबल विटामिन की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे या हम कोई चीज जरूरत से ज्यादा खा रहे। जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीज़न से या कारण से ज़रूरत से ज़्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं, वो मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज़ नट्स हो गया जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए, हर चीज़ रोटेशन पर रखो, हर फ्रूट्स हर सब्ज़ी रोटेशन पे रखो, जितना आप उसे अलग अलग चीजें खाएंगे अलग अलग समय पे उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
1: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए,
0: इश्क भुलावा हसी तो फसी पिक्चर से।

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीजों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीजें क्या है? पहला है आपका अनाज, तो आप चावल ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो, ठीक है। कड़धान्य जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है, तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तीसरा है आपकी सब्जियाँ,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: कोई भी सब्जी हो, और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है,
1: तो सब्जियां होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, पर ये जरूरी है, इसमें विटामिन्स भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीजें मेरा चौथा कंपोनेंट है। और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है, और फैट्स बुरे नहीं है, ये हमें ताकत भी देते हैं, तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेंगे, तब वो फायदा करेगा। तो ये जब कंपोनेंट्स है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ, और इसके साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है पानी, जिसे हम ज्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, तो पानी एक बहुत जरूरी चीज बन जाती है जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब तक ये चीजें, पांचों चीजें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं। फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरीज ले लो, या आजकल मॉडर्न जमाना है, पास्ताज एंड पिज्जाज का जमाना है, तो वो पास्ताज एंड पिज्जाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हम आग बंद करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज के पीछे
0: कितनी हमें आवश्यकता है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही, तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
1: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं जो हमारे खाने के लिए बहुत जरूरी है, और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतनी ही खाएंगे, तो ये हमें ज्यादा खाने से भी रोकता है, और ये ज्यादा जरूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज, उनके लिए ये चीज बहुत काम करती है, उनके लिए भी ये चीज बहुत काम की है जिनको वजन कम करना है
0: जी,
1: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत जरूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी जरूरी वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो कुछ नहीं खाओगे, और प्लस वो एक टू एक्सटेंड एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है, तो जो एसिड्स है स्टमक के वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीजें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिजोल्व हो गई है। तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले ले लीजिए, तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाद करता है, मेरा पेट भर देगा तो मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया, और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है।

0: अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं, वो अपना आहार लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
1: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं हैं। अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की ज़रूरत है, पर अगर आप ठीक हो
0: जैसे बीपी की गोलियां चल रही है।
1: तो मिलना ज़रूरी है, एक बार मिलना ज़रूरी है। आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नुकसान कर सकता है। काफ़ी बार हम चीज़ें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फ़ायदा कर रहा है, या ये चीज़ें हम अवॉइड कर दे रहे। जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है ये कंसिडर करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है, और
0: या
1: उसमें
0: फिर वो बिना मलाई का दूध है।
1: एग्जैक्टली अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है। तो हर चीज़ के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप वो समझ लें फिर आप खुद से चीज़ें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है। वो इंटरनेट से पढ़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज़ का नॉलेज है, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन रहती है।
0: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा,
1: बिल्कुल नहीं,
0: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
0: उसकी प्रकृति अलग होती
1: उनकी
0: है।
1: प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीज़ें चेंज हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशंस अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका। हर एक इंसान अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग है, वो एक चीज़ पे नहीं मापी जा सकती। और अगर सिंपल चीज़ें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीज़ें इंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा। तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन्स अगर हमें चाहिए कि हम रोज़ खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज़ खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन्स आ जाएंगे। रोज़ दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें, क्योंकि हर फल का अपना इम्पोर्टेंस होता
0: जैसे
1: है।
0: गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए?
1: आम गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं। कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है, तो जैसे मैंने बताया रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डायटिशियन की सलाह लगेगी ही,
0: जी।
1: बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन्स है। तो वाटरमेलन भी अच्छा है, गर्मी में अभी वाटरमेलन की भी सीजन है तो वो भी खा सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी सीजन चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीजन को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज़ प्रिजर्व्ड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीज़न छोड़ के अगर ठंडी की सीज़न में भी मिलने लगे तो मैं आम चूज़ करूँगी, तो वैसा नहीं करना है। उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड फूड नहीं चाहिए। और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में, जब भी हम खाना खाएं, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज़ तो कम से कम रखनी है। एक से ज़्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी ज़रूरत पूरी होगी, तब तक हमारी ज़रूरत नहीं पूरी होने वाली है।
0: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की ज़रूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीज़ें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले, ये भी ज़रूरी है। आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हो हाउसवाइफ हो, या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज का, कि 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात, कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है, स्पेशली अभी गर्मी की सीजन है। हम

0: पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए. तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से लें, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज़्यादा ना हो बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा. और जो हमें चीज़ें, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, जितनी भी चीज़ें चाहिए, वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ ख़त्म कर ली, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है.
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व बताया. आज के इस कार्यक्रम में हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं.
0: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से. आज का विषय था प्रोग्राम का, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व. आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा. और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को. नमस्कार.

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

हम सुन रहे थे ये गीत दीवाना एल्बम से सोनू निगम की आवाज़ में फैज़ अनवर के बोलों के साथ साजिद वाजिद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम रंग तरंग में, जो कि है पल के की आवाज़ में, महबूब के बोल हैं और के का ही संगीत है और लिया गया है पल एल्बम से।

0: हम सुन रहे थे सुनो एल्बम से लकी अली की आवाज़ में असलम के बोल और लकी अली के संगीत के साथ ये सुमधुर सा गीत कार्यक्रम रंग तरंग में। चलिए चलते हैं, सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे ब्रीदलेस शंकर महादेवन की आवाज़ में और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को जावेद अख्तर ने इसे अपने बोल दिए हैं। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा जो नुमाइश एल्बम से है, पंकज उदास ने गाया और संगीतबद्ध किया है, ज़फ़र गोरखपुरी ने इसे बोल दिए हैं।

मेरी जान, मेरा सब कुछ तो अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तो वो है जिसके लिए मैं सब।

हम सुन रहे थे जान एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फयाज अनवर के बोलों से सजे हुए इस गीत को, जिसे संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।

हम सुन रहे थे पिया बसंती एल्बम से उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में संदेश शांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत जो कि है आंखों में तेरा ही चेहरा। आर्यन इस एल्बम से लिया गया है, जय वालिया ने इसे गाया है, जय वालिया ने ही इसे लिखा है और ललित ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं यूफोरिया एल्बम से यह गीत जिसे गाया है पलाश सेन ने।

मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। इस एल्बम से हम सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक की आवाज में ललित सेन के द्वारा लिखे गए और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस गीत को।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम रंग तरंग यहीं तक। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
1: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गयी, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल होगा आपके बीच बस थोड़ी ही देर के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। यादों की महफिल में हम लेकर आते हैं किसी एक की याद, और आज हम लेकर आए हैं कवि प्रदीप के गीतों को। कुछ उन्होंने गाए हैं, कुछ उन्होंने किसी और गायन गायक की या गायिका की आवाज़ में हमारे बीच में प्रस्तुत किए हैं। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कवि प्रदीप की आवाज़ में ये पहला नगमा।

वामन अवतार फिल्म से हम सुन रहे थे ये गीत प्रदीप की आवाज में, प्रदीप के ही बोल और अविनाश व्यास के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में। ये गीत लिया गया है फिल्म मशाल से, मन्ना डे की आवाज में, प्रदीप के बोल, सचिन देववर्मन का है संगीत।

विराम के पश्चात पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का अगला गीत, शंकर सीता अनुसुईया। इस फिल्म से प्रदीप के बोल हैं, प्रदीप की ही आवाज़ है और शिवराम का है।

0: हम सुन रहे थे गीत पैगाम फिल्म से मन्ना डे और साथियों की आवाज में प्रदीप के बोल सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम यादों की महफिल में सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है।
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल में प्रदीप के द्वारा लिखा गया और प्रदीप के द्वारा ही गाया गया नागमणि फिल्म से यह गीत, जिसे संगीतबद्ध किया अविनाश व्यास ने।

कभी धूप कभी छांव फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम प्रदीप के बोल और प्रदीप की ही आवाज में चित्रगुप्त के संगीत के साथ।

0: हरिश्चंद्र तारा।
1: अगर हेल्पिंग है आपका नेचर तो नर्सिंग में है आपका करियर।
2: GNM, ANM, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन में करियर बनाएं। चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग आज ही आएं। विकास नगर कानपुर।
3: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
4: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
3: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
4: ये ना सोचो इसमें हार है कि जीत है।
3: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
4: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
3: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
4: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
3: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
5: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्त।

की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्त।

हम सुन रहे थे अमर रहे ये प्यार आशा भोसले की आवाज में। हमने लिया ये गीत अमर रहे ये प्यार फिल्म से। प्रदीप के बोल हैं और सी रामचंद्र का है संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत नास्तिक फिल्म से। प्रदीप की आवाज, प्रदीप के ही बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत।

स्कूल मास्टर फिल्म से सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज में प्रदीप के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत जो कि है फिल्म जागृति से। मोहम्मद रफी की आवाज है, प्रदीप के बोल है, हेमंत कुमार का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर में हम प्रति रोज आपको देते हैं एक बहुत प्यारी सी इबारत, और उस इबारत के साथ हम चुनते हैं कुछ नगमे। कभी कभी आपके और हमारे नगमे मिल जाते हैं और बन जाता है बड़ा प्यारा सा सुखद संजोग भी। तो चलिए हम चलते हैं आज की इबारत की ओर। इबारत कुछ ऐसी है कि चलो ना एक याद जीते हैं, अपनों की अपनों के साथ जीते हैं। कल ही तो उसका जन्म हुआ और सुनी हमने फूलों सी हंसी, फिर वही बालपन का सच्चापन और बढ़ती उम्र की नटखट नादानियां, फिर वही उम्र जब किताबें साथी बन गई और उम्र का वो साल जिसे बाली उम्र कहते हैं आ ही गया, और कब किसी के नयनों से भेंट हो गई, फिर प्रेम की जीत हार संघर्ष, साथ में बड़ा नाम करने की ख्वाहिश भी और जीवन साथी संग विवाह भी, धीरे धीरे एक परिवार जहां बहुत प्रेम है और फिर सुकून भरी दुनिया। शायद यही जीवन है आपका हमारा हम सबका। और इस प्यारी सी इबारत के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं और उन संदेशों को पढ़कर बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से लिखा है कि भारतीय संस्कृति दर्शन और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से मनुष्य का जीवन चक्र एक बेहद खूबसूरत और व्यवस्थित यात्रा है। चाहे हम विज्ञान की नज़र से देखें या दर्शन की, मनुष्य का जीवन चक्र हमें सिखाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हर अवस्था का अपना एक अनूठा महत्व सौंदर्य और कर्तव्य होता है। यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, बच्चों की मासूम हंसी सच्चाई नादानियां, उम्र के साथ किताबें, बाली उम्र में नैन से नैन मिलना, प्रेम की जीत हार संघर्ष, नाम करने की ख्वाहिश, जीवन साथी परिवार, सुकून भरी जिंदगी सुकून भरी दुनिया, यही है जिंदगी। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जीवन का कालचक्र मुख्य रूप से मनुष्य के जन्म विकास और समय के साथ निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। शैशवावस्था और बचपन 0 से 12 वर्ष तक विकास और सीखने का प्रारंभिक चरण, किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष शारीरिक मानसिक और भावनात्मक बदलावों का दौर, वयस्कता आत्मनिर्भरता करियर और पारिवारिक जीवन की शुरुआत, इसके लिए उन्होंने 20 से 40 वर्ष का उम्र दिया है, प्रौढ़ावस्था स्थिरता और अनुभवों का चरम, वृद्धावस्था 60 के बाद की उम्र, शारीरिक शिथिलता और मानसिक परिपक्वता का काल। ये सारी बातें हमारे श्रोता हमारे लिए लिख रहे हैं और लिखते लिखते बहुत अच्छे से हमारी इबारत को भी उन्होंने सजाया है। प्रेम किसी परिभाषा की परिधि में बंधने वाला तत्व नहीं है, यह तो एक चिरंतर प्रवाह है। और प्रेम क्या है, किसी को पालने के लिए व्याकुलता और फिर स्वयं को मिटा देने की पराकाष्ठा, क्या यह कर्तव्यों की वेदी पर किया गया त्याग है या साधारण मानवीय चेतना में किसी को पालना ही प्रेम मात्र माना जाएगा। ये उन्होंने कई सारे प्रश्न प्रेम को लेकर किए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हम सभी को देने ही हैं। और बड़ी सारी बड़ी खूबसूरत सी इबारतें आई हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जीवन प्रकृति का सबसे खूबसूरत और जटिल सिलसिला कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन की एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक चक्र की भांति घूमता रहता है। जन्म के अंत की बुनियाद को साथ लिए है, हम सभी मिट्टी से बनते हैं और फिर उसी मिट्टी में एक नए जीवन की खाद बन जाते हैं। जन्म से 12 वर्ष तक की उम्र उठते रोते मुस्कुराते नई नई जिज्ञासाओं के साथ किशोरावस्था में आकर हार्मोन के बदलाव के साथ अपनी गलती उसे सीखते हुए और स्वयं की पहचान को निश्चित करने के लिए अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद के साथ 20 से 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं, जो करियर रिश्तों और जिम्मेदारी के बोझ को ढोती हुई 40 के पार होती है। और इस दौर में बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े, लेकिन हम इन दो पीढ़ी के बीच का पुल बन जाते हैं। फिर आई 60 के बाद की पारी, जिसमें खुद को समेटने का वक्त शुरू होता है। शरीर धीमा पर समझ बिल्कुल साफ, पूरे जीवन की यादों को एक साथ खूबसूरत सहज और अंत की कामना करते हैं। मृत्यु अंत नहीं, जीवन चक्र की पूर्णता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और हम आपको सौंपना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत। बस एक प्रश्न है मेरा आपसे कि ये जो जीवन है, इस जीवन को लेकर आपकी अवधारणाएं क्या हैं, यानी जीवन
कितना सत्य है आपके लिए, ये बात आप सब बहुत अच्छे से हमें यहाँ बता रहे हैं। और ये बताते बताते बस इतना बता दीजिए कि ये वाला जो गीत है जो हम आपको सौंप रहे हैं, ये कौन सी फिल्म का है, बस इतना बताइए। और जल्दी से सुन लीजिए ये गीत।

0: जीवन के सफर में राही, लता मंगेशकर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, एस डी वर्मन के संगीत के साथ सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत हम। और हमने आपसे पूछा कि ये गीत कौन सी फिल्म का है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और केवल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं, आपने बाकी उत्तर भी दे दिए। कहा फिल्म मुनीम जी से है, आवाज लता मंगेशकर की है, देवानंद नालिनी जयवंत पर इसे फिल्माया गया है। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं, जीवन एक शाश्वत सत्य है जो एक आशीर्वाद के रूप में मिला है। बिल्कुल सही बात है। और इस सत्य का सबसे पहला सत्य जो होता है वो होता है हमारा जन्म। और जन्म के बाद हमारी सुंदर सुंदर अटकेलियां, मस्तियां और बहुत सारी शैतानियां।
1: नौ है यहाँ कई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यूपी ट्रिपल एस सी 2024 के तहत मुख्तलिफ ओहदों पर सिलेक्टेड 932 उम्मीदवारों को तकर्री लेटर तकसीम किए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 सालों में 9 लाख से ज्यादा नौजवानों को तकर्री लेटर तकसीम किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ रियासत को मुख्तलिफ हल्कों में आगे बढ़ाने में रियासत के होनहार नौजवानों ने भी अहम किरदार अदा किया है, जिसके नतीजे में आज रियासत मुल्क के ग्रोथ इंजन के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है।
2: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
1: हुकूमत ने कहा है कि मगरबी एशिया तनाजों की वजह से दरामदाद में रुकावट के बावजूद मुल्क की तेल रिफाइनरी फैक्ट्री मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं और हिंदुस्तान के पास खाम तेल का वाफिर जखीरा है। मगरबी एशिया में हाल के हादसात पर कल नई दिल्ली में मुनक़िद बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल, LPG और कुदरती गैस का वाफिर जखीरा है।
3: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: दरअसल हुकूमत ने YouTube के उन वीडियो की तरदीद की है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 9 दिनों के तेल का जखीरा बचा है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट जांच यूनिट ने दावा को खारिज करते हुए बताया है कि मुल्क में तकरीबन 60 दिनों के खाम तेल का जखीरा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और LPG की फराहमी पूरी तरह मामूल पर है। अवामी जुमरे की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने वाजे किया है कि रियासत में ईंधन वाफिर मकदार में है और किसी भी तरह की घबराहट या ज्यादा खरीदारी की जरूरत नहीं है। तेल कंपनियों ने आवाम से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और ईंधन की दस्तयाबी से मुतल्लिक जानकारी सिर्फ सरकारी ज़राए से ही हासिल करें। जेठ महीने के तीसरे बड़े मंगल पर दारुल हुकूमत लखनऊ के मंदिरों से लेकर जगह जगह बजरंग बली के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का इनेकाद हो रहा है। मंदिरों में भंडारों के साथ ही भक्तों की जानिब से पूरे शहर में सैकड़ों भंडारे मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस मौके पर आज आकाशवाणी लखनऊ में भी बजरंग बली की पूजा के साथ भंडारे का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ शाम

0: मिली फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश किवोल और सचिन देव बर्मन की आवाज बड़ी सुंदर से संगीत के साथ में। और हमारे श्रोताओं ने, हमने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन क्या है ना, आपके पास इतना ज्ञान है जिसे सच में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। हमारे विविध भारती के श्रोता बहुत ज्ञानी हैं और मैं उनके ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा, मिली ढूंढने वाला पूछता है सवाल और जवाब भी वही है, मिली। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और चलिए अब हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं बचपन को लेकर कि बचपन एक ऐसा समय होता है जब मन में कोई स्वार्थ, ईर्ष्या और भविष्य की चिंता नहीं होती। बच्चा हर पल में जीना चाहता है। इस उम्र में बच्चा जिज्ञासु होता है, नई चीजों को छूना, तोड़ना, फोड़ना और हर बात में सवाल पूछता है। उसका स्वभाव होता है बचपन में रोने और हंसने में कोई मिलावट नहीं होती। अगर बच्चा किसी बात पर रुठता है तो बहुत जल्दी मान भी जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बचपन होता ही बड़ा खूबसूरत है। और हमने आपसे पूछा था कि आप भी अपनी शरारतें हमारे साथ साझा कीजिएगा, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बहुत बड़ी शरारत याद आती है जिसके लिए मम्मी की मार पड़ी थी। मैं और भैया बिना किसी को बिना बताए नदी में नहाने चले गए थे। हम दोनों ही छोटे थे और हमें ये लगता था कि इस नदी के साथ साथ हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। अरे बाबा रे, ऐसी बड़ी गलती हमें करनी ही नहीं चाहिए। ये तो बड़ी गलती कर दी थी तो पिटाई तो शायद बनती है, क्योंकि आपके जीवन का भी तो सवाल बनता है ना। उसके बाद हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बड़ा भाई जो मुझसे 2 साल बड़ा है को कसाई बोलने पर जो गुस्सा आता था, तब मैंने विज्ञान में वायु के उपादानों को याद करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कसाइड याद करते हुए कसाई शब्द को जोर से उसकी तरफ देखकर पढ़ने लगा। वो उस पहले समझा मैं याद कर रहा हूँ, बाद में जब वो समझा तो खूब लड़ाई हुई। ये भोलापन, ये मासूमियत और ये लड़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती है। वैसे हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने तो शरारत बहुत कम की है, पर एक बार मेरी माँ सब्जी लेने गई हुई थी, मैंने लाइट के जो पुराने काले बटनों के ऑन ऑफ करने वाले जो खटके होते हैं ना, हाँ, उसमें एक तार डाल दिया था और मुझे इतनी जोर से करंट लगा कि आज भी याद आती है। सच में बहुत जोर से करंट लगा होगा और बड़ी तकलीफ भी आपको हो गई होगी। ऐसे काम करने नहीं चाहिए, भले वो बचपन हो या बड़े हो गए हो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बात कुछ और थी। अपनी सोसाइटी के बच्चों की टोली का लीडर था। सोसाइटी में कोई छत नहीं थी जहाँ पे पतंग लेने ना गया हूँ। सच में वो क्या दिन थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, आइस पाइस, खोखो, धूम खेले हैं। क्या बात है, बचपन की यादें ताजा हुई। बहुत सही, धन्यवाद। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और खूब मस्ती और खेल शैतानी करते थे। क्या बात है। हमारे श्रोता ने कहा कि हमारी पसंद का गीत है ये, मैंने कहा जो वो रोज़ सुन सकती हैं और कई बार इस गीत में फूलों के साथ सच में उन्हें हंसते हुए देखा गया है। सच बात है। और चलिए हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जया की मस्ती ये गीत माला, बहुत खूबसूरत से गीत आपको पसंद आया। हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी ना भूलने वाले बचपन के दिन आज भी भगवान से मानते हैं। बसंत पंचमी का दिन था और हमारे घर के पास मंदिर बन रहा था। वहीं पार्क में मैं और मेरी बहन खेल रहे थे। उसके सिर पर झूले की कील लग गई और बहुत सारा खून बहने लगा। मैं उसे लेकर मंदिर में गई, शिव जी के सामने गाने लगी, क्योंकि पिक्चर में देखा था कि गाना गाने से सब ठीक हो जाता है। चोट तो ठीक नहीं हुई, ज्यादा बिगड़ गई घर आने पर। बहुत पिटाई हुई, बहन के सिर पर 7 टांके आए, बस वही दिन सबसे अच्छे थे। सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मैंने बहुत मस्तियां की। मैंने दुकान के किराएदार की साइकिल के 1.5 पहिए पर बहुत सारे छेद करके उसको पंचर कर देता था और पास ही नवनिर्मित मकान में रात में पत्थर फेंकता था। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, ये बचपन की शरारत है, बचपन की शैतानियां हैं और ये हमारा बचपन हमारे साथ बना रहे, क्योंकि बचपन में मन कितना सच्चा और बच्चा होता है ना। बचपन में आपने शरारतें तो की हैं, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको शाबाशी मिली, आपकी पीठ ठोकी गई, वो बात भी हमारे साथ साझा कीजिए। और बताइएगा इस गीत में जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, बताइएगा।
1: जी

बच्चे मन के सच्चे ये गीत हम सुन रहे थे दो कलियां फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। और हमने आपसे एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछा था कि ये बताइएगा कि इसमें जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि दोहरी भूमिका निभाते हुए नीतू सिंह इसमें हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और हम आपसे पूछ रहे थे आपकी शरारतों के बारे में, और शरारतों के साथ हमने ये भी पूछा था कि ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आपकी पीठ थपथपाई गई हो, तो जरूर से बताइएगा कहाँ कहाँ आपकी पीठ थपथपाई गई। बदमाशियां तो हमने कर ली, तो पीठ में पिटाई हुई, लेकिन कभी कभी वो पिटाई जो है वो बड़ी प्यार से सहलाते हुए भी आ जाती है, क्योंकि हम कुछ बढ़िया काम कराते हैं, तो वो भी साझा कीजिएगा। पर हमारे श्रोता जो हैं वो कम बदमाश नहीं रहे, पढ़ते पढ़ते मैं इस गीत के साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, क्योंकि आपकी शैतानियों का पुलिंदा ही इतना बड़ा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बचपन में एक बार शैतानी की थी। मामला ऐसा था कि गणित विषय ने मुश्किल लगता था, तो एक बार मैंने होमवर्क नहीं किया, शिक्षक की डांडियाँ मार पड़ेगी इस डर से मैंने घर से स्कूल के टाइम पर निकला तो सही, लेकिन नज़दीक ही पेड़ के पास बैठ गया। करीब एक घंटे बाद माँ किसी काम से निकली तो मुझे देख लिया, पास आकर बोली तू स्कूल ही गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया, हाथ घसीट कर घर ले आई। फिर सच्चाई पता चलने के बाद बहुत मार पड़ी और उस दिन से बेवजह स्कूल कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वो दिन याद करके आज भी हंसी आती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं बचपन में क्या नहीं किया, गर्मी की छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, घर में बकरियां थीं जिन्हें हम नदी किनारे छोड़ जाते थे और वहीं नदी में नहाने लग जाते थे। मस्ती में कब टाइम निकल जाता था पता नहीं चलता था, और माँ हमें खोजते हुए आती थी, उनको देख हम लोग दौड़ लगाते थे। दीदी तो निकल जाती, मैं माँ के साथ आ

जाता और जो कुटाई पड़ती थी आहा क्या मजा आता था। तो ये बात तो बड़े मजेदार होती है। और कहते हैं कि माँ का माँ की मार भी बड़ी प्यारी होती है ना, बड़ी स्वादिष्ट होती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन मानव जीवन का सबसे खूबसूरत दौरों में से एक होता है, यह खोज और अन्वेषण का समय है। इस अवस्था में दुनिया के बारे में खोज करते हैं, बच्चे के रूप में जीवन के आनंद की संभावनाओं को अंतहीन रोमांच समझ पाते हैं। बड़े होने पर दायरा बढ़ जाता है, स्वस्थ खुशहाल बचपन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। बचपन मासूमियत और आश्चर्य का समय होता है, खेलना खोजबीन करना और एक बच्चा होने जैसी गतिविधियां खास होती हैं, तो क्योंकि सभी का बचपन बेफिक्री का हिस्सा है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं, स्याही लगा के जनाब हीरो बन गए, क्या बात है, बहुत सारी बात। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि हम जो हैं वो शाबाशी वाला काम भी हमने किया है। पहले ज़माने में प्लास्टिक नहीं चलती थी और मुझे सिलाई का शौक था, तो मैंने मेरी माँ के पुराने कपड़े में एक थैला बना के दिखाया था, तो उसमें शाबाशी मिली थी और पैसे भी मिले थे। क्या बात है, आप तो तब से ही जो पुरानी चीज़ें उसका उपयोग करना जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने बड़े प्यार से अपने बारे में लिखा है कि जो ये तकरीबन 7 साल के थे हमारे श्रोता, तो मम्मी जी के तकिए से 20 रुपए निकाले थे और पतंगी डोर खरीद कर खूब पतंग उड़ाए थे। जब चोरी का पता पिताजी को पड़ा था तो खूब पिटाई हुई थी। कड़ी दोपहर में उनके सारे कपड़े उतार कर धूप में छोड़ दिया गया था, बहुत रोए थे। और तभी उनकी दादी ने उन्हें चुप कराया था और पापा को डांट भी पड़ी थी, और ये दिन ये भूलते नहीं हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन अक्सर क्या होता है, मासूमियत भरी शरारत के लिए बहुत मार पड़ती थी। कभी शरारत की हो तब ना की हो तो भी पड़ जाती थी। हाँ, वो तो है कि जब जिसका दिल करे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में मैंने टीचर को सर पर स्लेट मारी थी। अरे भाई, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये गलत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में आम के बाग थे, गर्मी के दिनों में बच्चे दमा चौकड़ी करते और पेड़ों पर चढ़ जाते। इकलौता बेटा होने के कारण माँ हमेशा पेड़ पर चढ़ने से मना करती थी, क्योंकि एक लड़के का पैर 1 साल पहले गिरने से टूट गया था। मना करने के बाद भी पेड़ पर चढ़ता था, पता नहीं होता था माँ को। लेकिन एक दिन माँ खोजते हुए बाग में पहुंच गई। बच्चों ने बताया कि देखो पेड़ पर चढ़ा है, मैं नीचे उतरा। माँ ने डंडे से खूब मारा, बाद में फिर पेड़ों पर चढ़ना बंद कर दिया। हमारी एक और श्रोता लिखती है कि बचपन में शरारतों का अंबार था। पड़ोस के गुलाटी अंकल के हाथे में सब्जियां लगी थी, इसमें टमाटर बहुत लगे थे, सारे टमाटर अधपके होकर दिखाई दे रहे थे। खाने से मतलब नहीं था, अंकल उनके तरफ पिट्टू खेलने या रबड़ की बॉल ले जाने पर बहुत गुस्सा करते थे। अब उनके डांट का गुस्सा या टमाटर का लालच, हम भाई बहन बगल के टमाटर से सारे टमाटर तोड़ लाए और कुछ टमाटर हमने खाए और कुछ जो बच गए उनको हाथे में डाल दिया। कच्चे टमाटर पेट में जाकर हड़ताल कर दिए, उन्हें उल्टियाँ हुई। जब उल्टी हुई तो टमाटर तोड़ने का राज खुला। भैया को ज़्यादा लगा उल्टी होने से मैं बच गई, पर उनके हाथे में के बीच में हमारा आना जाना बंद हो गया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चीनी के डब्बे में हाथ मारना, आम के बगीचों से आम खाना, टीचर के बोर्ड की तरफ मुड़ते ही क्लास में कागज के हवाई जहाज उड़ाना, इन शैतानियों के बाद मिलने वाली डांट या सजा भी बहुत प्यारी होती थी। चाहे कितनी भी बड़ी शरारत क्यों ना हो, प्यारी सी मुस्कान और सॉरी सुनकर सब साफ हो जाता था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोसाइटी की टोली के लीडर थे और ऐसी कोई छत पर नहीं गए थे जहाँ पर पतंग नहीं गई थी। बहुत बढ़िया बात हमारे श्रोताओं ने लिखी है। तो चलिए, अपनी शरारतें और शाबाशियाँ बचपन की जरूर लिखते जाइए। ये एक गीत और उन सभी नटखटों के नाम जो बड़े होकर बहुत बड़े बहुत विशाल बन जाते हैं।

0: Join the noble profession of nursing, where every day brings the opportunity to make a difference.
1: GNM, ANM, Paramedical, BSc Nursing, Lab Technician, जैसे courses के लिए आज ही join करें चांदनी School of Nursing and चांदनी College of Nursing, विकास नगर कानपुर.
2: जीना संजोना जरूरी है. जिंदगी तभी सुरमई बनती है जब उसमें अपने लोग, यादें और संघर्ष और प्यार सब साथ में चलते हैं. इतनी अच्छी बात लिखी है. बचपन कली जवानी फूल और बुढ़ापा उसके साथ फल है. इसे बचपन की हंसी, जीवन का आगोश, बुढ़ापा समझदारी, इस रूप में देखा जाता है, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं. वह अंत में लिखते हैं कि जीवन का निचोड़ का फल है बुढ़ापा, और यही अनुभवों का कड़वा फल भूखता है, दूसरों को ज्ञान देता है. बहुत अच्छी बात आपने लिखी है. चलिए अब हम चल रहे हैं. हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी और आपने भी अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं. हमारी एक श्रोता लिखती है कि स्कूल में लंच टाइम पर मैं और मेरे दो तीन साथी स्कूल के लिए पास ही खेत पर चले जाते थे, जहाँ पर इमली और आम के पेड़ थे. उन पर पत्थर मारते थे और फल गिरने पर उन्हें खा लेते थे. बहुत सी बार पत्थर वहाँ रहने वाले लोगों को लग जाते थे, तो इस सब में मार पड़ने के डर से हम चले जाते थे. हमारे श्रोता लिखते हैं कि शरारत बचपन में किसने नहीं की. बागों से आम, अमरूद, इमली ये सब तोड़कर खाना आम बात थी. हमने फिल्में बचपन

बचपन से छुप छुप कर बहुत देखी है, क्रिकेट बहुत खेले हैं। अहो क्या बात है। और हमारे एक और श्रोता बड़े प्यार से बताते हैं ये जो फिल्म के गीत के बारे में, वो लिखते हैं कि फिल्म अमर प्रेम का गीत है, लता जी की आवाज़ है, आनंद बख्शी का गीत, आरडी वर्मन का संगीत, शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया गीत है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मेरे भैया देहरादून गए थे, मैं कुछ बड़ी थी तो मैं उनके पीछे पीछे टीवी चलाई, लेकिन मेरे दो छोटे भाई बहन उनने भी ट्राई किया, गाड़ी रेस होती थी, ज़्यादा तो नहीं लगा लेकिन थोड़ा गाड़ी को नुकसान हो गया, बाद में डांट पड़ी है। बिल्कुल सही बात है, सब ने बाद में भाई ने आने के बाद सबको गाड़ी सिखाने का प्रॉमिस कर दिया। बचपन की शाबाशी याद नहीं है ऐसा हमारे श्रोता लिखते, पर शरारत जरूर याद है और इतनी है कि गिनवाते गिनवाते प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बाड़े में रहते थे, वहाँ 20 किराएदार थे, उसमें बारूद की सिगड़ी, मतलब सिगड़ी पर भोजन बनाया जाता था, सिगड़ी छत पर रख दी जाती थी ताकि धुआं ना हो, बच्चे उस सिगड़ी में लाल मिर्च डाल दिया करते थे जिससे पूरे वारे में मिर्ची की गंध भर दुर्गंध भर जाती थी, वो पूरा बारा छींक छींक के परेशान हो जाता था। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी बाग में जाना तो कच्चे आम तोड़कर नहीं खाना, पर हम कहाँ मानते थे, डंडे गुलेल से आम मार के खा भी लेते थे, जो बचता था घर ले आते थे, तब मम्मी मारती नहीं थी। कोई बात नहीं, हमारी श्रोता जो है कह रही हैं, रोटी बना रही हैं और कमेंट कर रही हैं, बस यही तो जीवन है, हम प्यार से हर रंग को जी लेते हैं। हमारे श्रोता बहुत खुश है कि उनके गीत को लिया गया। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हम अपने बचपन में 10 वर्ष की उम्र में सुंदरकांड गाया था हारमोनियम बजाकर, हमें वो दिन याद आ रहा है, और ₹50 मिले थे पुरस्कार के रूप में, 11 दिन थे और ₹50 बहुत बड़ी चीज़ होती थी तब, ऐसा हम मानते हैं। हमारी श्रोता लिखती हैं कि बचपन में हमारी सहेली के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, वो लिख नहीं पाती थी, हम अपना भी लिख लिया करते थे, उसका भी लिख देते थे, और दोपहर में भोजन के समय में उसे खाना भी खिलाती थी। इस टीचर ने बड़ी तारीफ करी थी, हमारी सहेली के माता पिता को भी बताया था। ऐसे ही हमारे श्रोता एक और लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया इबारत है, जिसमें निस्वार्थ लिए हुए बचपन, दूसरी ओर अट्ठास लिए हुए यौवन, और सबका निचोड़ अनुभवी जीवन की प्रौणावस्था, इस उम्र तक आते आते यादों का गुलदस्ता बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे हमउम्र मामा जी ने मुझे चक्की में से सत्तू चोरी करवाई थी बचपन में, सुबह जब सबको पता चला तो मामा जी को तो डांट पड़ी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो मेहमान बनकर गई थी। सही बात है। स्कूल के दिनों में गर्मियों की स्कूल में लड़कियों की अक्सर नक्सीर फूट जाती थी, एक ही लड़की को हुआ, सारी लड़कियां डरकर भाग गई, पर मैं अपनी चचेरी बहन को देखा, ऐसे होते हैं, हम दो सहेलियों ने मिलकर उसे जमीन पर लिटाया, उसकी नाक पोछी, ठंडा पानी पिलाया और प्राथमिक उपचार किया, और स्कूल की टीचर को भी बता दिया, और बड़ी दीदी ने बड़ी पीठ थपथपाई थी आपकी। हमारे श्रोता लिखते हैं, गाय माता के बछड़े को खोल देते थे सुबह सुबह, दूध खाली कर पी जाता था तो पिताजी बहुत मारते थे, और खोलते इसलिए थे क्योंकि माँ बेटे दोनों रो रहे होते थे। हमारी कौशलता लिखती है कि एक बात और, हम अपनी सिर पर चुनी रख के आंखें बंद करके मस्ती में बैठ जाते, चुनी रख के बैठ जाते थे, और सबसे सब किसे कहते थे, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना का तो अर्थ पता ही नहीं था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरा दोस्त और मैं रात को मेन मार्केट में रोड के दोनों तरफ खड़े हो जाते थे, हाँ, और एक रस्सी रखते थे, कोई निकलता था तो दोनों दोस्त रस्सी को ऊपर कर देते थे, राह गिर गिर जाते थे, इस चक्कर में कई बार मार भी पड़े, ये तो गलत बात है। हमारे एक श्रोता सातवीं कक्षा में प्रथम आए थे और उन्हें शाबाशी मिली थी 1974 में, हम आपको आज भी शाबाशी देते हैं उस बात के लिए। बचपन में नवरात्रि में 9 दिन के सजाने का काम उनकी टोली करती थी, बहुत बढ़िया बात। हमारी शरारतें ऐसी थी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मम्मी कहीं जाती थी तो कभी जीन्स टी शर्ट भाई की पहनकर और अपनी सहेली को साड़ी और लहंगा पहनाकर डांस करते थे, फिल्मों को देखकर, फिर कैप लगाकर क्रिकेट खेलना घर के अंदर बिना नुकसान किया, बहुत अच्छे बच्चे थे। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी। अब चलते हैं हम उस ओर जो एक अलग दौर है, वो दौर में आपने जो विषय पढ़े हैं उन विषयों में से आपका पसंदीदा विषय कौन था, जल्दी से बताइएगा। आपके पसंदीदा विषय को बताते हुए ये भी बता दीजिए, ये गीत में आवाज़ किसकी है।

हम सुन रहे थे जख्म फिल्म का यह गीत आनंद बख्शी के बोल एवं करीम के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था कि आवाज़ किसकी है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, अलका याग्निक की आवाज़ है। और हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि आपको कौन सा विषय पसंद है, तो हमारे श्रोताओं ने अपने अपने विषयों के बारे में बताया है कि वो संभाजी, एक और श्रोता लिखते हैं स्कॉलरशिप की परीक्षा संभाजी नगर डिवीज़न से दूसरे नंबर पर पास हुई, ये बहुत प्यारा किस्सा है और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे श्रोता को फिजिक्स मैथ्स रसायन पसंद थे और 9वीं 10वीं में उन्होंने यही विषय लिए थे। हमारे श्रोताओं का कहना है कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और टीचर से वेरी गुड मिलता था। हमारे श्रोता लिखते हैं हिंदी रहा ये बिंदिया से प्रेम का सुमन याद नहीं, ये कुछ बात लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से उस बात को बता रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्द किताब के बहुवचन को एक वचन बना दिया, कुछ उन्होंने बताया है। और इसके साथ ही वह लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें हिंदी में बहुत अच्छी थी और आगे चलकर उन्होंने 25 देश विदेश में भ्रमण भी उन्होंने किया, ऐसा हमारे श्रोता कहते हैं। और हमारे श्रोता बताते हैं कि उन्हें डायग्राम बनाना बहुत पसंद है, इसलिए उनका सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बायो, किसी का भूगोल बहुत पसंद है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और दूसरा पसंदीदा विषय उनको संस्कृत का विषय। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आप गाने कम सुनवा रहे हैं, तो क्या करें, आप इतने प्यारे संदेश भेज रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम आपको देते हैं और साथ ही अगला गीत भी बड़े प्यार से आपको सौंप देते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मुझे इसका उत्तर सच में नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 16 बरस को ही बाली उम्र क्यों कहते हैं। बताइएगा इसका उत्तर, आपके हिसाब से क्या है इसका उत्तर, और ये बताने के साथ ये बता दीजिएगा कि इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर अनूप जलोटा ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल हैं। और आपसे पूछा था कि इसमें संगीतकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया कि जो इसके संगीतकार हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। बिल्कुल सही उत्तर। हमने आपसे पूछा था कि 16 बरस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपने मुझे तो ज्ञान ही मिल गया कि 16 बरस में दोनों ओर से आपका यौवन आ रहा होता है और बचपना छूट रहा होता है, किशोरावस्था छूट रही होती है और हार्मोनल बदलाव होते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। और सौंदर्य आकर्षण जो है निखार भी बड़ा खूबसूरत होता है ऐसा लगता है, इसलिए कवि की कल्पना 16 बरस तक पहुंचते पहुंचते जो बदलाव है ना, तो यौवन का दस्तक है, इसलिए कवि ने इस बात की कल्पना की है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई और बहुत सुंदर संदेश भेजे हैं। उसके बाद प्रेम होता है, जीवन के संघर्ष होते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ साथी बनते हैं और साथी बनने के बाद परिवार बनाते हैं और उस परिवार के बाद जब सुख चैन से एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो शायद ये गीत हम सभी के लिए, हम सभी के पूरे परिवार के लिए बनता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत, आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

कार्यक्रम के साथ सुरीला सफर में, सुरीले सफर के साथ आप सबके लिए बहुत धन्यवाद। और चलिए विदा लेते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर से, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सबका जीवन मंगलमय हो।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी परदेश पर आधारित है। हम सभी परिवार के लोग सदियों से बेहतर जीवन, शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय की तलाश में अपने घर, परिवार और देश को छोड़कर परदेश जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है परदेश में अच्छा अवसर मिलेगा और मिलता भी है। आकर्षक अवसरों के द्वार खुल जाते हैं, हम अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र चुन सकते हैं। इसके साथ ही परदेश में जीवन की राहें आसान नहीं होती, कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बाहर से सब कुछ वैभवशाली चमक दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में परदेश का जीवन कई चुनौतियों से भरा होता है, जहाँ की भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद झेलनी पड़ती है।

क्योंकि परदेश में रहकर हम कितना भी घर बना ले, तरक्की कर ले, ऐशो आराम का जीवन बिता ले, कहलाते तो हम परदेसी ही हैं। वहीं अपने परिवार से दूरी, अपनों से दूरी, मित्र परिचितों से दूर रहना सबसे कष्टकारी होता है। कई मांगलिक कार्यक्रमों, उत्सवों, त्योहारों, खुशी और गमों के मौके पर ना पहुंच पाने का दुख हृदय को पीड़ा दे जाता है। परदेश का अकेलापन और घर की याद व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर करती रहती है। लोग तो यही उलाहना देते हैं कि परदेश जाकर भूल गया, लेकिन सच मानिए हकीकत कुछ और होती है। दौड़ भाग की जिंदगी में वापस लौटना संभव नहीं हो पाता। अगर वापस गए भी तो वहां सब कुछ बदला सा मिलता है।

में रोजगार और आर्थिक दबाव के तले जिंदगी पिस कर रह जाती है। किराए का घर, खर्च की अधिकता, नौकरी की अस्थिरता, वीजा संबंधी नियम और कानूनी प्रक्रियाएं तनाव बढ़ाती हैं। कई बार परदेश में योग्यता के अनुसार कार्य क्षेत्र में समझौता भी करना पड़ता है। इससे आत्मसम्मान को ठेस भी पहुँचती है। समय लगता है, मित्र भी बनते हैं, मगर कहीं ना कहीं परदेश में अकेलापन लगता ही है। वैसे तो परदेश का जीवन व्यक्ति को आत्मनिर्भर, सहनशील और मजबूत बनाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि परदेश में दिक्कतें अवश्य आती है, पर वहीं जीवन का अनुभव भी बढ़ाती हैं और इंसान को निखारती हैं।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्त

काशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्टॉटिर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
3: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के

0: प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में है। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत है और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
4: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी

0: ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझकर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
1: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
2: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया, ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @SIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
3: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
2: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
4: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,000

0: 692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगने में।

हम सुन रहे थे ये गीत ताजमहल फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल और रोशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सेहरा फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और रामलाल के संगीत के साथ।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे पारसमणि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
5: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
6: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।

0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

मुझे जीने दो, इस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और जयदेव के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज होगी, शैलेंद्र के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत। पूछो ना कैसे।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए चलते हैं सदाबहार नगमे के अंतिम गीत की ओर, जो कि है हमरा ही फिल्म से। मुबारक बेगम मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आज्ञा दीजिए इस गीत के साथ, आप सबका कल्याण हो, नमस्कार।

0: सहेली
1: सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली बिल्कुल अच्छे हैं और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
2: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
1: अरे धन्यवाद। और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं
2: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल
2: है ना।
1: और इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है हमें जान रहा है
2: ख्याल रखने वाला है ना। विषय बता दे।
1: चलिए
2: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम यानी कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या दोनों ही हुआ है?
1: मार नहीं पड़ी। मार हाँ एक बार क्लास में पड़ी थी वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे। हाँ। वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी। हाँ। लेकिन हमारे पिताजी की आंखें ही बस ऐसी हुआ करती थी ना वो हमें नहीं डांटते थे वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
2: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे ना?
1: आंखों से डर जाते थे।
2: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी के आंखों के तारे होते हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
1: क्या बात है। और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं है
2: सचमुच
1: जगमगाते हुए
2: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में
1: जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो या कोई और भी अनुभव सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
2: और
1: हम
2: उसको कचोटते रहता
1: है और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया मैं तो ऐसी हूं नहीं या मैं तो ऐसा था नहीं ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके कहीं हम वो अटक के न रह जाएं। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो
2: अगर कि बताना चाहते हैं
1: कि कुछ ऐसी बात कुछ ऐसी ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए। तब तक ये गीत सुनिए।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो भाई, हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे सृजन भारती के इस जो अंक में जो प्रोग्राम होने वाला है, अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आप कोई खुद भी हैं तो जरूर पहुंचे इस कार्यक्रम में। सभी का आमंत्रण है।
2: बिल्कुल, स्वागत है सभी का। और आज हम जैसे उद्यमी महिला के बारे में जानकारी देते, तो आज हमने चुना है कल्पना सरोज
1: जी।
2: तो कल्पना सरोज भारत की एक प्रसिद्ध उद्योगपति, समाजसेवी और प्रेरणादायी महिला उद्यमी है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्हें संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
1: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने के कगार पर थी, सोनाली। उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा श्रेय जो है वो कल्पना सरोज को जाता है। कल्पना सरोज का जन्म साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक गाँव है रोबरखेड़ा, वहाँ हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और जैसा कि होता चला आ रहा है अक्सर कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था। और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां उन्हें आ रही थी और उन सब कठिनाइयों का वो डट कर मुकाबला कर रही थी।
2: और फिर जैसे होता है ना कि दीपा की बहुत सारी बाधाएं आई, उसके बाद में उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ तो जिंदगी में कर गुजरना है। और वे मुंबई चली आई और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरंभ किया। पहले सिलाई का काम किया, फिर फर्नीचर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
1: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
2: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा, कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना, यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
1: सही बात है, बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती हैं।
2: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है। विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा, कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं ना दीपा, तब हमें इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
1: बिल्कुल। और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो योग्यता

0: है उसकी भी जरूरत एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर वो मन में जो आपका जुनून जोश जो आपका रहता है ना, कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती तो वो शक्ति जो है मात्र शक्ति, पता नहीं क्या है उसमें, क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
1: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में तो फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही कहा। और इस बात पर अभी तो हम लेते हैं एक अंतराल और भी बातें करेंगे
1: जी।

0: देखो सोनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हा हा हा क्या कहने, बहुत सुंदर गीत
0: बिल्कुल। और देखो ना
1: ये गाने भी हमारे आंख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा था ना, हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
0: और दोनों के मुंह से। बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा, देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना,
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही।
0: हाँ।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहां तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है, बहुत
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है।
0: हाँ,
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आग का तारा कहते हैं, और हर माँ की आग का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्त क्रांतिकारियों की आग का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात,
0: क्या बात है,
1: हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
0: और देखो होना भी चाहिए
1: जी।
0: और एक और संदेश आया है, आंखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारे आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है, उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम कभी हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, क्यों नाराज हो रहा है ना।
1: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है। इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, उन्होंने उदाहरण लिख के भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ के आंख के तारे होते हैं, फिर वो छोटा बेटा हो, मझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ के आंख के तारे ही होते हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद कितनी मिलती है ना।

0: सोनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा था, है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई, हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाते हैं।
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं, माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं,
1: वैसे ही बने होते हैं। और फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते।

0: कहते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे माँ तो हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा करो, ऐसे कपड़े पहनो, इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मियाँ डांटती है। और फिर कभी
1: और जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त। और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना हम जैसे कि पछतावा होने लगता है।
0: और अगर माँ ना हो इस दुनिया में हाँ, तब तो और भी बुरा लगता है ना?
1: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा, जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछताव हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुंचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है आज है उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानि या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूँ, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा। और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखें आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्म क्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
1: और ऐसे में क्या होता है, निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हमारी गलतियां हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े? और फिर देखिए ना, अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते

0: चले जाएंगे, तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताएं। एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
1: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सुनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
0: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और देशे कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है, तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
1: भाई देखो, दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सोनाली, मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। जिंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वहीं एक साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरी दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहां पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मुझे परेशानी हो रही थी, तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया।
0: अच्छा।
1: बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है
0: बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी, जितने खुश आप है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई, इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पड़ जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल जाता है।
1: पर ऐसा होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की, और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो।
0: बिल्कुल, लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई, अगली बार आप मेहनत करके हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना, तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम। उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है, लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो, मम्मी तो यहाँ भी काम आई है।
1: तारा होते ना बच्चे,
0: इसीलिए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार। हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था। अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था। मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था, पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूं। क्या बात है।
0: और एक हमारे साथी ने भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी, हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था, उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में, यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपए बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए, ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था। मैं अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे।

0: और हमारी किताबें समझते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था। हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा। शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर दो नाती अपनी परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% और एक ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया
1: है। बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है। एक समय सच में भावनाओं का ये वो समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी मार डांट, तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता। मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है। परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं। परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा। और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं। और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी।
0: और तो गाना सुन ले,
1: चलिए।

0: भाई देखो, कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सिल लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए। जामे कुटुंब समाये, नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, और हमें भी आपको गिफ्ट देना होगा।

0: तुम कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम, उपहार या डांट मुझे तो याद नहीं, हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया, हम तो इतना कोशिश कर देते कि अगले साल नए क्लास में ही जाए।
0: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है परिणाम परीक्षा के बाद चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए हैं, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
1: एक गाना सुन के।
0: चलो।

0: आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
1: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छल गई हंसते हंसते।
0: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थाम कर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉयड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी,

0: बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
0: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है
1: कि वो आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
0: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुँच गया हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुई?
1: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो जबरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था। तो ऐसे गाती थी और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती और वहाँ से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
0: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से
1: जी,
0: तो वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में मिली।
1: घर में ही मिली, बिल्कुल सही।
0: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जाकर के शुरू हुआ।
1: जी,
0: अच्छा
1: जी।
0: लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयाँ आ जाती हैं, तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
1: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया और कहते ना पब्लिक आई में किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक, कहते हैं ना गाड़ियों की, लोगों की उस जमाने में क्यू थी। उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
0: अच्छा,
1: और लता जी भी वहाँ थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया। एंड आई वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर और कल्याण जी भी आ गई डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने वहाँ से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई और वहाँ आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना, और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहाँ।
0: वाह वाह वाह, भाई ऐसा
1: कहां
0: है,
1: कहां से कहां ये बात देखिए।
0: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहाँ, लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम ये गाना।
1: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा और यहाँ से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
0: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छू।
2: जॉइन द नोबल प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग वेयर एवरी डे ब्रिंग्स द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस।
3: GNM, ANM, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन जैसे कोर्सेज के लिए आज ही ज्वाइन करें चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, विकास नगर कानपुर।
4: दिल लेके जाते हो कहाँ, हम तो खड़े हैं यहाँ।

0: कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊं, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहां, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल
1: पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी, देखो कमल, जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना बराबर की लाइनें थी, और म्यूजिक भी, म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: ली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
1: लेकिन एक चीज है, आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा, वैसे बहुत अच्छा लगा,
0: अच्छा लगा
1: और बहुत, देखिए ऐसा है कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो गानों में
0: दस शुक्रिया
1: हमेशा भूलेगी। कमल जी, ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, आप इस बारे में क्या कहेंगी?
0: नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीज़ों को उभार के ला सके, और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका मकसद पूरा होता है, और ये आना चाहिए तभी आके गाने की सफलता हो सकती है।
1: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करती थी?
0: अच्छा, शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी, और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो, तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज़ कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गज़लों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में, तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक खास रियाज चाहिए, तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी, और इन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है, फिल्म बादशाह का, गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी।
1: अच्छा।
0: वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ, वो मूड भी बना लो, वो आवाज़ भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूँगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपये मिलते थे। उस जमाने में जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे, और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था, और मैंने ड्यूट्स ज़्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना, हम उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी, बनिस्पत के गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी बात करें, मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी के मन में तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
0: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गए हैं।
1: अच्छा
0: जी,
1: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला वो कौन सी थी?
0: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारसमणी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा, कहते हैं ना, टॉप पे रहा काफी दिनों तक।

0: और यहीं नहीं, जहाँ भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, ईस्ट अफ्रीका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है।
1: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता रहा है, तो आज एक बार फिर से रेडियो से
0: जरूर सुनाइए।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है, उसके बारे में ये कहूँ कि फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद में रेडियो पे सुनते थे,
0: बाद में रेडियो पे सुना करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के जरिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफ़ी गवाया और हमारा नाम कहते हैं ना रेडियो के जरिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ, बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो

0: जो तू हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
1: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
0: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी ज़िंदगी में शायद गायिका बनना था, और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
1: पछतावा तो नहीं होता?
0: बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
1: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए, क्या बनना चाहेंगे आप?
0: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
1: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं
0: जी,
1: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
0: जी, मैं बैठ तो नहीं सकती। ज़रूर, मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद पार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं, और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है। और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
1: वाह, तो कैसा काम चल रहा है ये?
0: अच्छा चल रहा है, अभी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
1: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है, और ये एकदम अलग इस फील्ड में मजा रहा है?
0: हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना, वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारो, जिन्होंने डॉन बनाई थी। और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी, आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है। कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मजेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है। और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे। और ये गाना भी लोगों ने बहुत पसंद किया। सुनिए।

0: कमल बारोड़ जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं
1: जी।
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी।
0: और फिल्मों में की संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो आप, नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ

0: हमारा संगीत बहुत रिच है और इसी इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है। कुछ तो कशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में। 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ। तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूँगी लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
1: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो
0: अच्छी बात है ना। और मुझे मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहाँ के ये मायने मेरे चार गाने किए और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला जैसे फैज़ अहमद फैज़, नदीम कासमी, अली रजा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूंगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाइए। फैज अहमद फैज की ये रचना और बोल है, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: संगीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो आप खास चीज़ें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तजुब करेंगे, ऐसे ऐसे ही रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं।
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गज़लों को ज़्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गज़लें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गज़ल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किलें थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
0: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नज़र करें।
1: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूँगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बारूड जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफी साहब थे, मुकेश जी थे और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहे। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: के आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी

0: आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की एक परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप
1: 35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए। और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं विजिट करते हैं, उनको पता है कि इतना छोटा आइलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आइलैंड है। और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था, लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया। बाकायदा 6 महीने शो की तैयारियां होती थी।
0: अच्छा।
1: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं। उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूध का काम बरसों से कर रही हैं।
1: तो बड़ी अच्छी बात कही आपने,
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को, फिल्म
1: से रही है।
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी, मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
0: तो कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का?
1: बहुत अच्छा रहता है। और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहाँ बात लेजर और सब पहुँच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहाँ आए हुए थे और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे। आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है स्टेज का, एक नशा है अच्छी चीज़ पेश करने का। और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
0: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में, और खासतौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
1: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज़्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहाँ रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी ये कहते ना हमारी एक्टिविटीज़ रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी।
0: अब ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
1: जी,
0: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
1: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ। अच्छा। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं तो समझे ना आप। तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूं मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूं या खुद गाऊं। अगर आवाज़ साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूं कि जहां मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले।
0: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का
1: जी,
0: वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
1: जी, मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊँ कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग टहिटी, बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना, हमारी वहाँ का जो हमारा समुंदर है, नीला पानी, सफेद पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
0: कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
1: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूँगी कि मेरा पहला LP म्यूज़िक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो LP का नाम था झनकार। उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूज़िक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए। और बोल हैं निगाहें नीची किए

0: कमल जी, जिंदगी में पुरस्कारों का, प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व हैं। तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में।
1: ढेर सारे मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। अच्छा। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दार इस्लाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था, फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली और वो भी एक किस्म का प्राइस था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलूड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है
1: जी,
0: आप क्या कहना चाहेंगी, कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हूँ?
1: जी, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए, जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।

बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था, और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

0: कमल बारोड़ जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिक राव गायकवाड का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्युलॉइड

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र एफएम 103.7 पर। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम गुड इवनिंग कानपुर में। शाम की ठंडी हवा और संगीत के मधुर छांव के साथ आज के गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आरजे आरती ज्योति, और आपका और हमारा ये साथ आपकी शाम को बनाएगा और भी खूबसूरत, क्योंकि इस पूरे गुड इवनिंग कानपुर के सफर पर साथ रहेगा आपका और हमारा और आपके मन को सुकून देने वाले संगीत का। साथ ही होगी शहर की ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स और जानकारी। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं बस इस खूबसूरत सफर पर, जहाँ है वादियाँ, जहाँ है घटाएं,

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड इवनिंग कानपुर। और दोस्तों, गुड इवनिंग कानपुर के सफर पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम के बाद 5:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्वास्थ्य चेतना, जिसमें डॉक्टर अमितेश यादव से दीप शिखा गुप्ता की बातचीत का भाग 3 सुनवाया जाएगा। विषय होगा चाइल्ड केयर ड्यूरिंग समर्स। शाम 6 सुनिएगा विविधा के अंतर्गत कार्यक्रम शाम गजल। छह बजकर 30 मिनट पर सजेगी महफिल प्रोग्राम गाने तराने की, जिसमें आज के गाने तराने की, जी हाँ, थीम होगी ये कि गर्मी में एहसास ठंडक का। फौजी भाइयों की पसंद के गीतों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा शाम 7 से। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा कार्यक्रम पॉप एक्सप्रेस। रात 8 सुनिएगा कार्यक्रम हवा महल। 8:45 पर कार्यक्रम चित्र लोक। 8:45 पर सुनेगा का हिंदी में समाचार। अपनी पसंद के गीतों का कार्यक्रम आपके फरमाइश आप सुन सकते हैं रात 9 से। रात 10 छाएगा जादू कार्यक्रम छाया गीत का। रात 10:30 पर सुनिएगा ढलती जाए रात। जानकारी आज शाम प्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों की, और फिलहाल बढ़ते हैं गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम में आगे इस गीत के साथ।

0: अगर हेल्पिंग है आपका नेचर तो नर्सिंग में है आपका करियर।
1: GNM, ANM, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन में करियर बनाएं। चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग आज ही आएं। विकास नगर कानपुर।
2: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक विको वज्रदंती।
3: एक आवश्यक सूचना सुनिए, कला साहित्य शिक्षा खेल चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
4: जी हाँ दोस्तों, मन का रेडियो बजने दो जरा। और ये रेडियो की ही आवाज है जो 90 वर्षों से भरोसे के साथ आज भी है आपके साथ। और इसकी सूचना जो सेवा बनी और संगीत जिसने दिलों को जोड़ा, वही है आकाशवाणी आपके साथ। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड इवनिंग कानपुर, जिसमें दिल कह रहा है

जी हाँ दोस्तों, और मन का रेडियो बजने दे जरा। एंड ये जो टाइम है ये है इवनिंग टाइम यानी शाम। सिर्फ दिन का अंत नहीं होती, ये वक्त होता है खुद से मिलने का, परिवार के साथ समय बिताने का। बैठने का, दोस्तों के संग मुस्कुराने का यानी दिन भर की थकान मिटाने का, और मुस्कुराहट के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का। और कहते भी है ना कि मुस्कुराने से सारे गम मिट जाते हैं, तो खुल के हंसिए, मुस्कुराइए और जिंदगी को खूबसूरत बनाइए।

आप सुन रहे प्रोग्राम गुड इवनिंग कानपुर। और दोस्तों, कहते हैं ना, बदलाव ही जिंदगी है। और दोस्तों, यही बदलाव है जो हमें मौसम में देखने को मिलता है। और कानपुर के मौसम की बात करें तो ग्रामीण कृषि मौसम यानी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अनुसार आज दिनांक 19 मई 2026 को मैक्सिमम टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है एंड मिनिमम टेम्परेचर 26.4 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। और दोस्तों, सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 41% एंड न्यूनतम 17% रहने की संभावना है। आगामी 5 दिनों में आसमान साफ रहने के कारण वर्षा की कोई संभावना नहीं है। और लू का जो प्रकोप है, जो हीट वेव का प्रकोप है, जिसके कारण हम सब परेशान हैं, वो 19 से अभी 24 मई 2026 तक ऐसे ही जारी रहने के आसार हैं। तो दोस्तों, दोपहर के वक्त हो सके तो बाहर ना निकलें, और बाहर निकलने से बचें, ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें, हल्के सूती कपड़े पहने और रहें कूल एंड हाइड्रेटेड। और साथ ही बने रहें हमारे साथ गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम में।

दोस्तों हमारी ऐतिहासिक धरोहरें जो हमारे इतिहास को करीब से जानने का अवसर देती हैं, तभी हमें इन धरोहरों को सहेजना चाहिए। और ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि 17 मई को प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत को आधिकारिक तौर पर 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल वंश कॉपर प्लेट यानी मुहर और सिक्के लौटाए गए। ये ताम्र पट्टिकाएं जिन्हें लीडन प्लेट्स भी कहा जाता है, जिसमें उस समय की ऐतिहासिक जानकारी दर्ज है। कितनी अच्छी बात है कि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, वो आ रही हैं वापस हमारे पास। तो इसी बात पे सुनवाते हैं आपको ये बेहतरीन सा सॉन्ग।

जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। प्रोग्राम चल रहा है गुड इवनिंग कानपुर, जिससे आप जुड़े हुए हैं विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ। और दोस्तों हो जाओ रंगीला रे, क्योंकि प्रोग्राम के साथ आप जुड़े हैं। और अब आपको बताते चलें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट संशोधन अध्यादेश 2026 की मंजूरी दे दी है, जिससे अब जजों की संख्या 33 से बढ़कर हो गई है 37। और मुख्य न्यायाधीश सहित जजों की संख्या 38 हो जाएगी। और अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, तो दोस्तों होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग मामले हैं उनका बैकलॉग कम हो जाएगा।

तो दोस्तों इसी गीत के साथ मुझे यानी आरजी आरती को दीजिए अब इस प्रोग्राम गुड इवनिंग कानपुर से इजाजत। नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ। ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र FM 103.9।

0: सात पर।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चेतना। सभी सुनने वालों को मेरा यानी कि दीपशिखा गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। आज का ये अंक लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ मैं, और आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है शहर के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमितेश यादव को, जो कि GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में एसोसिएट प्रोफेसर की तरह काम भी कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी कानपुर के हमारे स्टूडियो में।
2: जी नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट है। गर्मियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, पारा दिन पर दिन चढ़ता जा रहा है, ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल कैसे की जाए, इस विषय पर हम लोग आपसे आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि गर्मियों के मौसम में बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी कौन सी समस्याएँ अक्सर देखने को मिलती हैं।
2: जी, तो गर्मियों में हम देख रहे हैं, इस समय पीक पर गर्मी है, टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर है। अमूमन हम लोग तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे लेते हैं, लेकिन बच्चे अपनी धुन में मस्त रहते हैं, तो बच्चों में बहुत सारी बीमारियां होने का रिस्क रहता है। सबसे पहले उनमें पानी की कमी होने का रिस्क रहता है, डिहाइड्रेशन होने का। दूसरा, वो खाना खा रहे होते हैं, खुली की चीज़ें खा लेते हैं, तो उनमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है, डायरिया का रिस्क रहता है। तीसरा, अगर दोपहर में ज़्यादा खेल लिए हैं या उन्हें ज़्यादा गर्मी लग गई है, तो हीट स्ट्रोक का रिस्क है। ऊपर से बच्चों की स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव होती है, उनमें स्किन इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं और आंखों के इन्फेक्शन भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से गर्मी में बहुत सारी बीमारियां होने का बच्चों को रिस्क रहता है।
1: डॉक्टर साहब, ऐसे में इतनी सारी बीमारियां जब होने का रिस्क है इन गर्मियों में, तो कैसे रखना चाहिए हमें अपने बच्चे को सुरक्षित?
2: जी, तो सबसे पहले तो हमने बताया सबसे खतरनाक चीज़ है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना। तो गर्मी में हमें बच्चे से बार बार पूछना है कि बच्चा पानी पिए, अगर वो स्कूल जा रहा है तो पर्याप्त मात्रा में पानी उसको बॉटल में दें, साफ पानी दें, जब भी वो स्कूल से आए उसको पानी पिलाएं। दूसरा, उसको साफ खाना खिलाएं, ताज़ा खाना खिलाएं, 2 घंटे से पुराना बना हुआ खाना ना खिलाएं, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। तीसरा, उसको आउटडोर एक्टिविटी उसकी लिमिटेड करें, पीक आवर्स पे उसको घर पे ही रखें। जैसे देखा गया है कि 12 बजे से लगभग 4 बजे के बीच टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें बच्चा घर में ही रहे। अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो बच्चे को छाता दें, कैप का प्रयोग करें, सनस्क्रीन क्रीम लगाएं और बच्चे को बार बार पानी पिलाएं। यही सब चीज़ों का ध्यान रख के हम बच्चों को गर्मी के प्रकोप से बचा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने अभी सजेस्ट किया कि बच्चों को पानी पिलाते रहना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि छोटे बच्चे अक्सर या तो पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं या बार बार पानी पीने से भी इनकार कर देते हैं, ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?
2: ऐसे में पेरेंट्स को परेशान नहीं होना चाहिए, बच्चे अमूमन वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं, तो पेरेंट्स को बच्चों को दिखा दिखा के खुद भी पानी पीना चाहिए। और जो खाने की चीज़ें जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे तरबूज है, खरबूज है, खीरे हैं, इन चीज़ों को प्रयोग ज़्यादा करें। सिकंजी बनाएं, मैंगो शेक बनाएं, सूप बनाएं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा घर में बनाएं जिसमें तरल या पानी की मात्रा ज़्यादा हो, और बच्चे से बार बार पूछें, उसको पिलाएं।
1: जी, यानी कि लीड बाय एग्जांपल, जो आप करेंगे वही बच्चे भी करेंगे। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए पूछना चाहेंगे कि लू का प्रकोप भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लू लगने पर बच्चे को क्या लक्षण आते हैं उसमें, और क्या करना चाहिए हमें, कैसे उसे आराम पहुंचा सकते हैं?
2: जी, तो लू लगने में कई बार बच्चे में गर्मी के कारण, पहला तो हमने बताया था जैसे कि डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आएंगे, बच्चा सुस्त होगा, उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हमें इसे अर्ली आइडेंटिफाई कर लेना है।
1: जी,
2: और लू से बचाने के लिए वही हमने बताया कि पानी बच्चे को बार बार पिलाना है। बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो उसे कपड़े लूज पहनाने हैं, ढीले कपड़े हों जो पसीना भी अब्जॉर्ब करें, कैप और छाती का प्रयोग करें। और जब भी बच्चा जैसे बाहर के जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, ठंडा गर्म, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और अगर बच्चे में कोई भी लू लगने का लक्षण मिल रहा है तो उसके लिए हम, अगर सीरियस कोई लक्षण मिल रहा है, जैसे बच्चा सुस्त है और वोमिटिंग कर रहा है, हेडेक बता रहा है, तो डॉक्टरी सलाह लेकर उसका इलाज कराएं। तो लू से बचने का यही तरीका है, अच्छे से फ्रेश खाना खिलाएं, पानी बच्चे को ज़्यादा ज़्यादा पिलाएं और बच्चे को कॉटन के ढीले कपड़े पहनाकर ही बाहर भेजें, और जो पीक आवर्स है उनमें बच्चे को बाहर भेजने से अवॉइड करें।
1: डॉक्टर साहब, गर्मियों में बच्चों में होने वाली समस्याओं पर अभी हम आगे और बात करेंगे, लेकिन अभी कार्यक्रम में

0: डॉक्टर साहब की पसंद का ये खूबसूरत सा गीत सुनने के बाद एक बार वापस लौट चुके हैं हम अपने स्टूडियो में, जहां आज बात कर रहे हैं शहर के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमितेश यादव जी से। बातचीत का विषय है बच्चों में गर्मियों में स्वास्थ्य देखभाल कैसे करें। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक बार लू लगने पर आपने जैसे कि बताया कि बच्चे को घर पे भी हम कुछ उपाय करके उसे आराम दे सकते हैं और डॉक्टरी सलाह भी ले लेनी चाहिए, लेकिन कितने दिनों में बच्चा वापस नॉर्मल हो जाता है इलाज मिलने के बाद?
1: जी अमूमन ये देखा गया है कि हमें बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाना है।
0: जी,
1: डिहाइड्रेशन की सीवियरिटी की ग्रेडिंग है माइल्ड मॉडरेट सीवियर। तो शुरू में जब डिहाइड्रेशन के लक्षण होते तो बच्चा बहुत ज़्यादा पानी मांगता है और थोड़ा सुस्त रहता है, रूटीन जो एक्टिविटी होती है उससे कम एक्टिव रहता है और रिस्पांस थोड़ा स्लो करता है। जैसे जैसे उसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है, हो सकता है बच्चा पेशाब ना करे और बिल्कुल भी आपकी बातों को ना

0: सुने, आंखें उसकी गड्ढे में जाने लगे, मुंह सूखने लगे, तो ये सब सीवियर डिहाइड्रेशन के सिम्टम है। फिर पानी भी नहीं पी पाएगा। तो अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो मुझे देखा गया हॉस्पिटलाइज होने के 24 घंटे के अंदर सुधार हो जाता है। मॉडरेट और माइल्ड ग्रेड घर में ही सही हो जाते हैं। उससे बचने का ये तरीका है कि ORS का घोल है, जिसे कि जीवन रक्षक घोल कहते हैं। जब भी बच्चे को लू लगे या उसमें डिहाइड्रेशन को कोई भी लक्षण हो तो ORS पिलाना तुरंत शुरू कर दें। ORS दो तरीके का होता है, एक 200 ml पानी में घोल के बनाना होता है और 1 लीटर पानी में, तो उसी उसमें सब लिखा रहता है। उसी तरीके से ORS का सोल्यूशन बनाए और 24 घंटे तक खराब नहीं होता है। अमूमन कई पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा ORS नहीं पी रहा है, तो ये देखा गया है कि अगर थोड़ा सा जैसे मटके का जितना ठंडा पानी होता है उतने ठंडे पानी में अगर हम ORS बनाते हैं तो बच्चे पी लेते हैं। दूसरा, अगर ORS नहीं पी रहा है तो नारियल पानी पिलाएं, दाल का पानी पिलाएं, और चावल का जो माड़ या स्टार्च होता है वो भी पिला सकते हैं हम लोग, या घर में बना के सिकंजी भी दे सकते हैं। तो थोड़े अगर माइल्ड रूप में लू लगी है तो हम बच्चे को घर में ही सही कर सकते हैं। अगर कोई डेंजर साइन है जो हमने बताया, जैसे बच्चा सुस्त हो रहा है, पानी नहीं पी पा रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, हेडेक बता रहा है, तो उसमें हॉस्पिटल में भर्ती करा के 24 घंटे में बच्चा सही हो सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, लू लगने के साथ साथ एक और समस्या है जो ना केवल बच्चों में बल्कि बड़ों में भी इस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, और वो है डायरिया की समस्या। तो ऐसे में बड़े लोग तो अपना कुछ मैनेज कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन बच्चों में डायरिया होने पर माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत चिंता में आ जाते हैं। ऐसे में उनके लिए क्या सलाह होगी आपके पास?
0: जी, जैसा आपने बताया कि गर्मियों में डायरिया का रिस्क बढ़ जाता है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा डायरिया का रिस्क क्यों बढ़ जाता है। ये देखा गया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं डायरिया को आज करते हैं, वो गर्मी का जो टेम्परेचर है 38 के ऊपर, ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें वो ग्रो कर जाते हैं। तो इससे बचने के लिए यही है कि हम बच्चों को ताज़ा खाना खिलाएँ, घर का खाना खिलाएँ, बाहर का खाना ना खिलाएँ, और बच्चे की आदत डालें कि खाना खाने से पहले वो हाथ धोए, अगर बाहर से खेल के आ रहा है तो हाथ धोए, अगर वो टॉयलेट गया है तो हाथ धोए, बार बार उसके हाथ धुलाएं, सफाई रखें और ताज़ा खाना खिलाएं, टीकाकरण उसका कंप्लीट कराएं, बार बार पानी पिलाएं, और अगर बच्चे में कोई भी लक्षण मिल रहा है तो उसको हम डॉक्टरी सलाह लेके दवा दें। तो इस तरीके से हम डायरिया से बच्चे को बचा सकते हैं, हाइजीन मेंटेन करके बच्चे को आसानी से ताज़ा खाना खिला के बच्चे को आसानी से बचाया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने बताया कि गर्मियों में बच्चों में कुछ एलर्जीज भी हो सकती हैं, जैसे आंखों में उनके समस्या हो सकती है, तो इन सब चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे इन ट्रिगर्स को रोका जाए?
0: जी, गर्मियों में देखा गया है कि पसीना ज़्यादा निकलता है
1: जी,
0: और बच्चे खेल के आ रहे हैं तो जो स्किन में नमी हो जाती है उसमें फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ग्रोथ होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्किन भी की मॉइस्चर नहीं रह जाता है। तो ऐसे में हमें बच्चों को जब भी बाहर से खेल के आए तो उसके कपड़े बदल लें या उसको नहलाएं, फिर नए कपड़े पहनाएं, और जहाँ पे पसीना ज़्यादा निकलता है उन जगहों को साफ करें, बच्चे को सफाई रखें, क्योंकि बच्चों की स्किन सॉफ्ट होती है, जब इतनी हीट पड़ती है या धूप पड़ती है तो उसमें सन स्किन बर्न होने का रिस्क होता है, तो वो मोर प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब भी बच्चे को नहलाएं उसके बाद उसको हम कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं, बच्चा बाहर जा रहा है सनस्क्रीन क्रीम लगाएं, और कैप का प्रयोग करें, छाते का प्रयोग करें, और ये एलर्जिक इंड्यूस बीमारियाँ इसमें बढ़ जाती हैं, तो इस तरीके से हम बच्चे को बचा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने अभी बोला कि जब बच्चा बाहर जाए गर्मियों में तो सनस्क्रीन का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। ऐसे में हमारे मन में ये शंका आती है कि जो सनस्क्रीन हम वयस्क या एडल्ट्स यूज़ कर सकते हैं, क्या वो सनस्क्रीन बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, या उनके लिए कुछ अलग टाइप के या कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस के साथ सनस्क्रीन आते
0: हैं? बच्चों में 2 साल के ऊपर के बच्चों में हम सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, और बच्चों की सनस्क्रीन थोड़ा अलग तरीके की रहती है, जिसमें कम केमिकल हो, है ना, पीएच उसका सही हो और वो हार्म ना करे, तो डॉक्टरी सलाह पे ही उस तरीके की सनस्क्रीन का प्रयोग करें।
1: डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे स्टूडियो में आने का और हमसे इतनी सारी बातें करने का। अगले अंक में आपसे पुनः बातचीत करेंगे, फिलहाल आज आपको धन्यवाद देते हुए अपने श्रोताओं से भी विदा लेते हैं। नमस्कार।
0: आपको और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगले किसी अंक में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।
2: ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र FM 103.7 पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम-ए-गजल।

जी हाँ दोस्तों, और मैं तो आ चुकी हूँ स्टूडियो में और प्रोग्राम चल रहा है शाम गजल। और दोस्तों ये महफिल है दिन भर की भाग दौड़ के बाद, अब वक्त है सुकून का, जज्बातों का, एहसासों का और उन अल्फाजों का जो दिल से सीधे निकलकर दिल तक पहुँचते हैं, आपके दिल तक।

0: Join the noble profession of nursing, where every day brings the opportunity to make a difference.
1: GNM, ANM, Paramedical, BSc Nursing, Lab Technician, जैसे courses के लिए आज ही join करें चांदनी School of Nursing and चांदनी College of Nursing, विकास नगर कानपुर.
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से. वाह,
3: अनजान ऐप से बचें.
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
5: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक विको वज्रदंती.
6: दोस्तों, गजल सिर्फ गीत नहीं होती, ये एहसासों की आवाज होती है. और कहा भी गया है, गजल वो आईना है जिसमें हर दिल अपनी कहानी देख लेता है.

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी अपनी आरजे आरती ज्योति और आ गई हूं स्टूडियो में लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम गाने तराने। दोस्तों, बढ़ती गर्मी, तपती दोपहरें और चुभती धूप, लेकिन चिंता कैसी, क्योंकि आज हम लाए हैं संगीत की ठंडी फुहार जो दिल को देगी सुकून और मौसम को बना देगी सुहाना। जी हाँ दोस्तों, आज भी सजाई है ऐसी महफिल जो दिल को देने वाली है ताजगी, मन को देने वाली है राहत। गाने तराने की थीम, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो है बढ़ती गर्मी में संगीत की ठंडी फुहार। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपको सुनवाते हैं बेहतरीन सा ये सॉन्ग।

वाह क्या मधुर एहसास दिलाता है गीत। और वैसे भी दोस्तों गर्मी अब अपने पूरे रंग में आ चुकी है। सूरज देवता सुबह से ही बता देते हैं कि आज एसी, कूलर या ठंडे लस्सी की जरूरत पड़ेगी या नहीं। लेकिन दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम सजा लाए हैं ना आपके लिए संगीत की ठंडी छांव, यानी ऐसे गाने जो गर्मी का एहसास थोड़ा कम कर दें। और अब हम बढ़ते हैं एक ऐसे गाने की ओर जिसमें हवा है, सुकून है, रोमांस की ठंडक है।

सच में दोस्तों, हर मौसम का अपना अलग संगीत होता है। जब गानों में बारिश, हवा और प्रकृति की खुशबू खुल जाए तो गर्मी भी ना मुस्कुरा उठती है।

सच में दोस्तों, जब गर्मी में चल जाए ठंडी हवा तो ऐसा ही कुछ याद आता है। और गर्मी सिर्फ मौसम में ही नहीं होती, कभी काम की थकान भी हमें गर्मी का एहसास कराती है, और ऐसे में संगीत बन जाता है मन का एसी। और अब आपको मन जो है आपका, वो लगता है कि कहीं सागर किनारे जाएं या कहीं नदी के किनारे बैठें, और कुछ मन सोचता है कि उन्हीं ठंडी ठंडी हवाओं के बीच बस गुनगुनाते रहें।

सच में दोस्तों, सागर किनारे मिलती है ऐसी ही ठंडक और ऐसी ही महफिल सजी है जो दे रही है आपको थोड़ा सुकून, थोड़ी ठंडक, जो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। यानी सुरों की ऐसी महफिल सजी है जो बढ़ती गर्मी में संगीत की ठंडी फुहार बनकर बरस रही है, और फिलहाल ऐसी ही फुहार लेकर आ रही है ये हवा हवाई।

जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही बस नाचते गाते जब आती है गर्मी, और नाचते गाते इसलिए आती है क्योंकि ये होती है बच्चों की मस्ती वाली सौगात। दोस्तों, ये गर्मी सिर्फ गर्माहट का ही एहसास नहीं कराती बल्कि अपने साथ लाती है छुट्टियों की रौनक, बचपन की यादें, नाना नानी दादा दादी का प्यार और उसमें बिताने वाला हर वो पल जो बिल्कुल आमरस जैसा मीठा लगता है।

सच में दोस्तों, मौसम कोई भी हो, गर्मी ठंडी या बरसात, जब हो अपनों का साथ तो गर्म मौसम भी संगीत की तरह ही जादू चलाता है और नर्म एहसास दिला जाता है। शाम ढलते ही रौनक बढ़ने लगती है गली मोहल्लों की और ऐसा लगता है कि बस इस गर्म मौसम में भी घटा छा गई है, बहार आ गई है।

तो दोस्तों उम्मीद है संगीत के ठंडी फुहार आपकी शाम को दे गई होगी राहत और मुस्कान। और मैं थी आपके साथ आरजे आरती ज्योति इस प्रोग्राम में, जो अब चाहती है आपसे इजाजत। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही मोड़ पर, म्यूजिकल मोड़ पर। और तब तक के लिए आप बस इस बढ़ती गर्मी में खुद का ख्याल रखिए, खूब पानी पीजिए, शिकंजी आमपना का आनंद लीजिए, मुस्कुराते हुए बने रहिए हमारे साथ, यानी विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ। तब तक के लिए आपको कर रही हूँ मैं नमस्कार।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

फौजी साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज के इस प्रोग्राम जयमाला में। मैं हूं आज आपकी साथी अनुराधा। शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: उदित नारायण, शंकर महादेवन, महालक्ष्मी और साथियों की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी 10, समीर ने इसे लिखा था। लीजिए अब सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज में अगला गीत, भारतीय सेना।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

फिल्म ज्वेल थीफ से लीजिए गीत सुनिए, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, एसटी बर्मन का संगीत। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम जयमाला विविध भारती से।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम जयमाला।

ये तो होना ही था खेल खेल में, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दूसरा आदमी, यह है फिल्म का नाम, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में।

0: अनजान ऐप से बचें।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: Join the noble profession of nursing, where every day brings the opportunity to make a difference.
3: GNM, ANM, Paramedical, BSc Nursing, Lab Technician जैसे courses के लिए आज ही join करें चांदनी School of Nursing and चांदनी College of Nursing, विकास नगर कानपुर।

0: नेहा कक्कड़ की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम पॉप एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: अरे अब तक घंटी नहीं बजी, 10 बज चुके हैं, अब तक तो घंटी बज जानी चाहिए। क्या बात है, कॉलेज की छुट्टी तो नहीं है आज?
1: अरे नहीं यार, सवाल ही नहीं उठता, मैंने खुद प्रिंसिपल को ऑफिस में जाते देखा है।
0: फिर क्या बात है, आओ ऑफिस में चलकर शर्मा से पूछे।
1: हाँ हाँ चलो।
0: शर्मा जी क्या बात है, 10 बज चुके हैं, कॉलेज की घंटी नहीं बजेगी आज?
2: क्या बताऊँ, कहाँ मर गए आज सबके सब चपरासी। आप सब लोग अपनी अपनी क्लास में चलिए, मैं जल्दी से घंटी बजवाता हूँ।
0: अच्छा ठीक है।
2: सर रामरथ अभी तक नहीं आया, वक्त हो गया है, घंटी कौन बजाएगा?
3: हाँ शर्मा जी, वक्त हो गया है, घंटी अब तक बज जानी चाहिए थी, मगर रामरथ अब तक क्यों नहीं आया? खैर वासुदेव को कहिए कि घंटी बजा दे।
2: वासुदेव ने तो 2 दिन की छुट्टी ली है सर।
3: तो फिर साइंस लेबोरेटरी के फरीद को बुलाकर जल्दी से घंटी बजवाइए।
2: सर मालूम हुआ है कि फरीद भी आज नहीं आया।
3: ओफो, क्या कॉलेज के सभी चपरासियों ने हड़ताल की है? रामरथ नहीं, वासुदेव नहीं, फरीद नहीं, तो कोई और होगा, किसी से भी बजवा लीजिए घंटी।
2: सर मैं किससे कहूँ और क्या कहूँ, मेरी सुनता ही कौन है? हरनाम सिंह से कहा था कि भैया जरा घंटी बजा देना, तो कहने लगा

0: मेरा काम सिर्फ ऑर्डर घुमाना है, घंटी बजाना नहीं। पर आप ही बताइए प्रिंसिपल साहब, मैं क्या करूं?
1: यही तो कमी है शर्मा जी आप में। राम रख है नहीं, दूसरा कोई चपरासी घंटी बजाता नहीं। ऐसी हालत में आपके सामने दूसरा कोई हल नहीं है।
0: सर आप भी मुझ पर ही खफा होने लगे, मुझे रास्ता तो बताइए कि मैं क्या करूं।
1: अरे भरे आदमी, इसमें करना ही क्या है, 10 कब के बच चुके हैं, घंटी अब तक बज जानी चाहिए थी। जाइए आप ही जल्दी से घंटी बजा दीजिए।
0: क्या क्या मैं बजाऊं घंटी?
1: क्यों, क्या हो गया? अगर आज घंटी आप ही बजा देंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा?
0: सर आज तक मैंने अपनी साइकिल की घंटी के सिवाय दूसरी कोई घंटी नहीं बजाई।
1: आप भी हद करते हैं शर्मा जी। अच्छा जाइए काम करिए अपना, मैं बजा देता हूँ घंटी।
0: नहीं नहीं नहीं सर, आप बैठिए मैं बजाता हूँ घंटी, मेरे होते हुए भला आप तकलीफ करेंगे?
1: तो फिर जाइए और जल्दी से घंटी बजा डालिए।
0: जाता हूँ सर, जाता हूँ। बस एक ख्याल आता है सर, वरना अब तक तो मैंने कब की घंटी बजा दी होती।
1: कह डालिए कौन सा ख्याल है वो?
0: आप तो जानते ही हैं सर कि मेरा साला इस कॉलेज में पढ़ता है।
1: तो
0: अगर घंटी बजाते हुए कहीं उसने मुझे देख लिया और घर जाकर अपनी बहन को कह दिया
1: तो क्या होगा?
0: तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा सर।
1: वो कौन सी मुश्किल है जिसमें आप फंस जाएंगे?
0: अब क्या अर्ज करूं सर, घर जवाई क्या बन गया हूं, मैंने तो गुलामी ही लिख कर दे दी है।
1: तो अब आप दफा हो जाइए, मैं खुद ही घंटी बजा लूंगा।
0: नहीं नहीं नहीं सर, आप बैठिए सर, मैं जाता हूँ बजाता हूँ घंटी।
2: मैं अंदर आ सकती हूँ सर?
1: हाँ हाँ आओ आओ, क्या बात?
2: सर मैं यशपाल से तंग आ गई हूँ, जरा उसे समझाइए। अगर मेरे पिताजी को उसकी हरकतों का पता लग गया तो बहुत बुरा होगा, उनका गुस्सा बहुत खराब है।
1: क्या हुआ आखिर, कुछ कहो तो।
2: सर वो प्रेम दीवाना है, उसने दुनिया भर में डंका पीट दिया है कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, जबकि मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है।
1: मगर उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना सब करने और कहने की?
2: हिम्मत का क्या है सर, आजकल कोई भी लड़की किसी लड़के से जरा हंसकर बोल ले तो बस वो समझता है कि लड़की उसके प्रेम में पागल है। सचमुच ये लड़के बड़े दीवाने होते हैं।
1: तो मतलब ये हुआ कि तुम भी यशपाल से हंसकर बोल चुकी हो, हाँ?
2: इसमें बुराई ही क्या थी सर, एक दिन पार्क में मैं अपनी बहन और जीजा जी के साथ बैठी थी, यशपाल भी उधर आ निकला। मैंने सहपाठी समझ कर अपनी बहन और जीजा जी से उसका परिचय करवाया। उस दिन के बाद उसने एक दो बार मुझसे किताबें मांगी, मैंने दे भी दी। बस इसी से उसको गलतफहमी हो गई कि मैं उसे प्रेम करती हूँ। अब आप ही बताइए कि इसमें मेरा क्या कसूर है?
1: पर आज क्या बात हुई, इस वक्त तुम यहाँ क्यों आई हो?
2: आज तो बात बहुत बिगड़ गई है सर। मैं कॉलेज के फाटक में घुसी ही थी कि किसी लड़के ने मुझे कुछ कहा, इस पर यशपाल उस पर बिगड़ गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मेरे बारे में इस तरह की लड़ाई झगड़े हूँ ये अच्छा नहीं है सर, इसमें मेरी बदनामी होती है।
1: कहाँ है वो लोग?
2: वो लोग फाटक के पास झगड़ रहे हैं।
1: अच्छा तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं अभी देखता हूँ। क्या तमाशा लगा रखा है, जाओ अपनी अपनी क्लासों में। यशपाल तुम मेरे साथ ऑफिस में आओ। सुनिए शर्मा जी, ड्राइवर से कहिए कि सुरेंद्र को जल्दी से मेरी कार में अस्पताल ले जाए।
0: जी बहुत अच्छा सर। अरे कहाँ? अरे वासुदेव, ओहो वासुदेव भी छुट्टी पर गया है।
1: तो क्या बात थी यशपाल?
3: बात कुछ खास नहीं थी सर, सुरेंद्र मेरे व्यक्तिगत मामले में दखल दे रहा था, मैंने उसे मना किया तो वो गर्म हो गया, बात बढ़ गई, हाथापाई तक की नौबत आ गई।
1: हाथापाई भी ऐसी कि तुमने सुरेंद्र का सिर ही फोड़ दिया? ऐसा क्या व्यक्तिगत मामला था तुम्हारा तो उसे दखल देने की जरूरत पड़ी और तुम्हें उसका सिर फोड़ने की जरूरत आ पड़ी?
3: कैसे बताऊं सर, शर्म आती है।
1: बहुत खूब, शर्म आती है और वो भी तुम्हें, अपने सहपाठी का सिर फोड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई और अब वजह बताते हुए तुम्हें शर्म आ रही है। वक्त खराब मत करो मेरा, बोलो क्या बात थी, जल्दी बोलो।
3: सर वो मेरे प्राइवेट मामले में दखल दे रहा था, ये मुझे सहन नहीं हुआ।
1: आखिर क्या प्राइवेट मामला है तुम्हारा, जवाब दो।
3: सर सुरेंद्र मेरे और सुजाता के बीच नाजायज दखलंदाजी कर रहा था।
1: क्या संबंध है तुम्हारा और सुजाता का?
3: सर हम दोनों एक दूसरे को।
1: हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम दोनों एक दूसरे को?
3: सर बात यह कि सुजाता मुझको और मैं सुजाता को।
1: रुक क्यों गए, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, तुम सुजाता को

0: और सुजाता तुमको क्या?
1: असल बात ये है सर कि हम दोनों एक दूसरे को
0: प्रेम करते हैं।
1: यस सर,
0: प्यार करते हैं।
1: जी हाँ,
0: मोहब्बत करते हैं, यही ना?
1: जी हाँ सर, जी हाँ।
0: गधे हो तुम अव्वल दर्जे के।
1: जी
0: तुमने अपनी सारी शर्म और हया घोल कर पी डाली है। सुजाता तुमसे प्रेम प्रेम कुछ नहीं करती।
1: मगर सर वो
0: तुम ही एक नंबर के बेवकूफ हो जिसे न अपनी इज्जत का ख्याल है न दूसरी लड़की की इज्जत का।
1: मैंने क्या किया है सर? सब जानते हैं कि मैं और सुजाता काफी नजदीक हैं।
0: लगता है कि शर्म और अक्ल से तुम्हारी खानदानी दुश्मनी है। कोई कुछ नहीं जानता, सिर्फ तुमने ही डंका पीट रखा है। अगर सुजाता ने अपनी बहन और जीजा जी से तुम्हारा परिचय करवा दिया, तुम्हें अपनी किताबें दे दी, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो तुमसे प्यार करने लगी है। अगर तुम्हारी ये बेहुदा बात मान भी ली जाए कि तुम सुजाता से प्रेम करते हो, तो इसमें सुरेंद्र का सिर फोड़ने की नौबत कहाँ से आई?
1: सर मैं सुजाता से कुछ कहना चाहता था, तभी सुरेंद्र ने उसे छेड़ दिया। मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे उल्टा जवाब दिया, बस बात बढ़ गई।
0: तुम जैसे आवारा और जाहिल लड़के ही कॉलेज के नाम को बदनाम करते हैं। किसी लड़की की बदनामी का दर्द तुम्हें तब मालूम हो यशपाल, जब तुम्हें अपने बहन की बदनामी का दर्द उठाना पड़े।
1: सर मैंने किसी को बदनाम नहीं किया।
0: बको मत, चोरी और सीना चोरी, शर्म तो आती नहीं और ऊपर से जबान लड़ा रहे हो। अगर सुजाता के पिताजी को मालूम हो गया तो क्या होगा? सुरेंद्र का सिर फूट गया है, उसके घर वाले यहाँ कॉलेज में आएंगे। उन्हें क्या जवाब दोगे तुम और क्या जवाब दूंगा मैं? क्या करूं अब मैं तुम्हारा? पुलिस के हवाले कर दूं या कॉलेज से निकाल दूं?
1: नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं खताबार हूं, कसूरवार हूं। इस बार तो मैं दोस्तों के सिखाने से भूल कर बैठा।
0: कौन है ये दोस्त?
1: मेरी ही क्लास के लड़के हैं सर।
0: क्या सिखाया था उन्होंने?
1: यही कि सुजाता बड़ी घमंडी लड़की है, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। अगर यशपाल उसे काबू में लाकर दिखाए तो हम भी माने कि उसमें कुछ है।
0: और तुम उनकी फूंक में आकर कूद पड़े मैदान इश्क में। ये बताओ कि तुम्हारे कोई बहन है?
1: हाँ सर, दो बहनें हैं।
0: फर्ज करो इसी तरह कोई तुम्हारी बहनों को बदनाम करने की कोशिश करे तो क्या करोगे तुम? चुप क्यों हो, जवाब दो।
1: सर ऐसी बात तो कोई भी नहीं सहन कर सकता।
0: तो जो बेजा हरकत तुम सहन नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरों से कैसे उम्मीद रखते हो कि वो सहन ही कर लेंगे? क्या तुमने ये समझ लिया है कि सुजाता के कोई है ही नहीं?
1: सर सच में मैं दोस्तों के कहने में आकर नादानी कर रहा था, मगर इस वक्त बहुत शर्मिंदा हूँ। इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ।
0: बस बस ठीक है, मेरे पाँव पड़ने और क्षमा मांगने से क्या होगा? तुम्हारी हरकत से सुजाता को मानसिक कष्ट पहुँचा है और सुरेंद्र को शारीरिक पीड़ा, वे तुम्हें कैसे क्षमा कर देंगे?
1: मैं उन लोगों से भी माफी मांग लूंगा सर, पहले आप तो क्षमा कर दीजिए।
2: मैं अंदर आऊँ सर?
0: आइए
2: सर। रामरख आ गया है।
0: रामरख आ गया है? कहाँ है?
2: बाहर बैठा है, लगता है कुछ नशा करके आया है।
0: अच्छा, अंदर भेजिए उसे।
2: जी बहुत अच्छा सर।
3: जयराम जी की साहब।
0: जयराम जी की। अब तक कहाँ थे तुम?
3: अस्पताल गए थे साहब।
0: अस्पताल जाना था तो छुट्टी क्यों नहीं ली, खबर क्यों नहीं दी? तुम्हारी लापरवाही से कितनी परेशानी हुई है हम लोगों को। क्या बीमारी है तुम्हें, क्यों गए थे अस्पताल?
3: बीमारी तो हमें कुछ भी नहीं है साहब।
0: बीमारी नहीं है तो फिर अस्पताल क्यों गए थे?
3: कुछ काम से गए रहे साहब।
0: बीमारी का इलाज कराने के सिवाय अस्पताल में क्या काम हो सकता है?
3: होता है साहब, आजकल अस्पताल में भी काम होता है।
0: क्या होता है, कुछ बोलोगे भी?
3: साहब हम खून देने को गए थे।
0: खून? कैसा खून?
3: अपना खून साहब। कल यहाँ एक दुर्घटना हुई, अपने कॉलेज का एक लड़का मोटरसाइकिल से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया था साहब। दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुँचाया।
0: अच्छा,
3: कल रात मैंने रेडियो पर एक ऐलान सुना था कि उसी छात्र को खून दिया जाना है, लेकिन ओआर रकम का खून मिल नहीं रहा है और इसीलिए लोगों से दरखास्त की गई थी। प्रिंसिपल साहब,
0: हाँ।
3: पिछले महीने जब कॉलेज में मेरे खून की जांच हुई थी ना, तो मुझे याद था कि मेरा खून उसी रकम का है, इसीलिए आज सुबह मैं अपना खून देने अस्पताल चला गया, इसी कारण मुझे देर हो गई। हम चपरासी जरूर है साहब, लेकिन हमें भी तो अपने छात्रों के लिए कुछ करना है ना साहब।
0: शाबाश रामरख, शाबाश। सचमुच तुमने बहुत नेक और बहादुरी का काम किया है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरे कॉलेज का एक चपरासी अपने कर्तव्य में इतना आगे निकल गया कि उसने पढ़े लिखे समझदार लोगों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ रामरख। तुम्हारे आने से पहले जितना दुखी था उससे कई गुना अधिक खुश हुआ हूँ। ये लो दूध पीना और तुम घर जाकर आराम करो।
3: नहीं साहब, नहीं, रुपए हम नहीं लेंगे।
0: क्यों?
3: अभी जो मन में खुशी है, रुपए लेने के बाद तो हमारा मन दुखी हो जाएगा साहब।
0: रामरख, ये रुपए मैं तुम्हें खुशी से दे रहा हूँ, शरीर में कुछ कमजोरी आ गई।

0: होगी, दूध पियोगे तो कुछ चुस्ती आ जाएगी भैया।
1: नहीं साहब, हमका कमजोरी नहीं आई है, हमें तो और ताकत आ गई है। हम भी दूसरों के कुछ काम आ सकते हैं, इसी खुशी के आगे कमजोरी मालूम ही नहीं पड़ती साहब।
0: फिर भी रामरख, बात मानो और ये रुपए रख लो भैया।
1: हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब, रुपए हमको नहीं चाहिए, ये रुपए ले लीजिए साहब।
0: अच्छा,

0: मैं तो डर ही गया था कि देर हो गई है, आज साहब नाराज होंगे।
1: अरे नहीं नहीं, नाराज गलत कामों पर हुआ जाता है, अच्छे कामों पर नहीं। अच्छा अब तुम जाओ।
0: अच्छा साहब, नमस्ते।
1: नमस्ते। यशपाल
2: जी,
1: तुम सुन रहे थे ये सब कुछ?
2: हाँ सर।
1: देख लो, वो एक अनपढ़ चपरासी है और तुम पढ़े लिखे विद्यार्थी।
2: समझ रहा हूँ सर, वो अनपढ़ इंसान भी मुझे मात दे गया है। मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं भी अस्पताल में जाकर उतना खून तो दे सकूं जितना सुरेंद्र के सिर से चला गया है।
1: तो तुम समझ चुके हो कि आदमी का खून भी देश की अमानत है।
2: हाँ सर।
1: आपसी झगड़ों के लिए इसे जमीन पर नहीं बहाना है। यशपाल, ये रामरख भी एक प्रेम दीवाना है। अगर तुम्हें प्रेम दीवाना ही बनना है तो रामरख की तरह बनो।
2: यस सर।

प्रेम दीवाना। हवा महल के अंतर्गत अभी आपने ब्रजभूषण की लिखी ये नाटिका सुनी। प्रस्तुत करता थे पुरुषोत्तम दारवेहकर।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।
1: अगर हेल्पिंग है आपका नेचर तो नर्सिंग में है आपका करियर।
2: GNM, ANM, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन में करियर बनाएं। चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग आज ही आएं। विकास नगर कानपुर।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से।
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आपका अपना चहेता मन भाता लहराता फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर आ रहा है आप तक इसी शनिवार और रविवार को शाम 5 बजे से 103.7 पर। रिकॉर्डिंग होगी दो दिन, बुधवार और गुरुवार को 11 बजे से 12 बजे तक। तो अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए हमें कॉल करें 0512-254-1818 पर। हेलो कानपुर।
7: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको टर्मरिक, हल्दी चंदन के गुणों से भरी सुंदर निरोगी त्वचा के लिए

जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे श्रीकांत फिल्म से। और अब ऊंचाई फिल्म से ये गीत अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में, अमित त्रिवेदी का संगीत है, इरशाद कामिल ने से लिखा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

ओके जानू फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शाशा तिरुपति, आशिमा महाजन और साथियों की आवाजें, ए आर रहमान का संगीत था।

तुम्हारी सुल्लू, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते

0: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
0: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यो बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग

0: देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
1: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
2: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग

0: विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र FM 103.7 पर।

तो वक्त हो चला है रात के 9 बजे का और ये जो समय होता है ना, ये होता है आपकी फरमाइश कार्यक्रम का। तो आप सभी श्रोताओं का आपके फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ। आज मैं हूँ आपके साथ आरजे आरती ज्योति। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो पहला पत्र है वो कहाँ से आया है और उसमें किस गीत की फरमाइश की है। तो सबसे पहले जो मेरे हाथ में पत्र है वो आया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय और श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय का। दोस्तों ईमेल फरमाइश बयानी स्टार्ट हो गई है। कौशल्या जोशी जुड़ी है हमारे साथ चंद्रनगर कॉलोनी से। कौशल्या जोशी, प्रमिला जानी, सोनाली जोशी और आशा शर्मा जोशी मेरठ यूपी से, छोटे अंसारी और भाभी असमान सारी।

मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से जुड़े हैं हमारे साथ सुमान तायडे, वसंतराव भोजनी निवृत्ति ऑडोकार जुड़े हैं हमारे साथ, और इसके साथ ही इन्होंने ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया जुड़े हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम में शामिल करने की कृपा करें। तो भाई ये कृपा करने की बात नहीं है, आपने ईमेल किया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से जुड़ चुके हैं हमारे साथ मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, और इसके साथ ही जो अगली ईमेल फरमाइश है वो आ रही है शंभु दयाल जी की, लिख रहे हैं बहन आरती ज्योति आपको मेरा सादर नमस्कार जी, आपको भी हमारा नमस्कार, गांव जाखो।

आपने ईमेल किया हमें शंभू दयाल खट्टक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खट्टक, और ईमेल को शामिल करने के लिए उन्होंने धन्यवाद भी लिखा है। तो अब बढ़ते हैं अपने सॉन्ग की ओर, जिसे पसंद किया है आप सभी ने, आप सभी को सुनवाते हैं

रख दिया, मेरा नाम रख दिया। और दोस्तों सच में ये दीवानगी ही है जो आप जुड़े हैं हमारे साथ। इसमें प्रोग्राम चल रहा है आपकी फरमाइश, और इस प्रोग्राम में जुड़ गए हैं आप हमारे साथ। अब देखते हैं हमारी अगली फरमाइश कौन सी है और किस फिल्म के सॉन्ग के लिए है। और आर कुमार जी लिख रहे हैं अपनी फरमाइश में, नमस्कार वडिंग खेड़ा पंजाब से। मिंटू टॉमस है, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा साथ में लिख रहे हैं कि हमें कोई भी गीत सुनवा दीजिए। और इसके साथ ही हमें जो पत्र प्राप्त हुआ है वो आया है प्यासा सावन फिल्म के गीत के लिए, और ये पत्र आया है छत्रपति संभाजी नगर से, सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से आया है ये प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्रजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, अंशुमन और ओवी जी का ये जो पत्र है ये हमें प्राप्त हुआ है प्यासा सावन फिल्म के गीत के लिए। और इसके साथ ही हमारे साथ बहुत सारे जो लिसनर्स हैं वो भी जुड़ गए हैं, तो उनको भी हम बताते चलें कि ये कौन कौन से लिसनर हैं। आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, लिख रहे हैं मोहम्मद अंसारी ताज, मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं।

साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं आदाब नमस्कार, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, और इन्होंने लिखा है किसी भी गीत में हमारे नाम को शामिल करें। और इसके साथ ही रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर जुड़ गए हैं हमारे साथ जसपुर उत्तराखंड से, और इन्होंने लिखा है आदाब नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं ताज मोहम्मद जी। ताज मोहम्मद जी, आपका शुक्रिया, आपने हमें ईमेल किया। और अब आफताब अंसारी जी लिख रहे हैं, आरती ज्योति सिस्टर जी, आपको प्यार भरा नमस्कार, आदाब, प्रोग्राम पेश करने का अंदाज बहुत ही शानदार, इन्होंने लिखा है। और शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से इन्होंने मेल किया है, आफताब अंसारी हैं, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर, मास्टर लोबना अंसारी और आलिया अंसारी। इसके साथ ही आप सुनिए अपनी पसंद का।

प्रेम ही है जो जुड़े हैं आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में। और अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और लिख रहे हैं रेडियो प्रेमी श्राफ रोड राजकोट से प्रेमा रानी जाटव डॉली और सुरेश डोकर गुजरात से प्रवीण राज सोनी श्वेता सोनी चमनपुरा मोरबी और प्रमिला जेटली दीपक और आशु जेटली जी की जो मेल है वो भी हमें प्राप्त हो रही है। संजय ढिंगिया जी ने बागपत यूपी से हमें मेल किया है। संजय ढिंगिया नमन ढिंगिया अपार ढिंगिया और इन्होंने नमस्कार भी लिखा है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी फरमाइश और इसके साथ ही हमारे हाथ में एक पत्र है और ये पत्र आया है अंधेरी बावली मूसा नगर से माजदा बेगम साजदा बेगम एम नईम एम शफिया अली हैदर रफत हबीब आरिफ सोनी आबदा जुबदा मैशर अकबरपुर से इकरा बेगम है अनीसा बेगम है शफीक शिवा और हमराही रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं और इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है वो है आन मिलो सजना का गीत। इसके साथ ही एक और मेल हमें प्राप्त हो रही है। जय जी की मेल है। प्रोग्राम में आप लिख रहे हैं कि प्रोग्राम में आप एक से बढ़कर एक गीत सुनवा रहे हो जी, किसी भी गीत में हमारा मेल शामिल कर लेना। तो देखिए आपकी जो मेल है वो शामिल हो गई है और ये मेल आई है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल सचिन खोरवाल और अमन खोरवाल दीपांशु खोरवाल जी की। इसके साथ ही लुबना अंसारी जुड़े हैं हमारे साथ और लुबना जी ने हमें जो

मेल लिखा है उसमें लिखा है कृष्णा की नगरी मथुरा से इन्होंने मेल किया है, लिख रहे हैं नमस्कार आदाब, आपको भी नमस्कार। सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी फरमाइश, और ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विविध भारती के कानपुर केंद्र से, और आज मैं हूँ आपके साथ आरजे आरती ज्योति, और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सुधाकर जाधव जी, लिख रहे हैं प्रेम पूर्वक नमस्कार आपको, यह प्रोग्राम आपका हम लाइव सुनते हैं, प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा लगता है, इस प्रोग्राम की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर होती है, सभी गीत सुमधुर होते हैं, और इन्होंने लिखा है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव जी हैं, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव हैं, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, और इसके साथ ही कुमारी प्रणाली देशमुख जुड़ी हैं हमारे साथ, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, समस्त राजे राधव देशमुख वायाल परिवार जुड़ा है हमारे साथ, और इसके साथ ही दुश्मन फिल्म के गीत के लिए हमें पत्र प्राप्त हुआ तिवारी घाट कानपुर से, श्यामलाल विट्टन मेवा भैया और शिवानंद अड्डी भाई, शाकिर अहमद बड़के, अभिजीत सिंह सांगा जी जुड़े हैं हमारे साथ, और इसके साथ एक जो मेल प्राप्त हो रही है वो है प्रेम जोरा जी की, करणवीर हाउस भुचो कैंचिया कैंचिया जी हाँ भटिंडा पंजाब से इन्होंने लिखा है नमस्कार जी, प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन अभिजोत, और इन्होंने लिखा है कि किसी भी गीत में प्लीज मेरे नाम को शामिल कर लेना, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए, और इसके साथ ही अहमद फूलवाले जी का भी हमें मेल प्राप्त हो रहा है, और लिख रहे होस्ट बहन जी आदाब नमस्कार, बहुत सुंदर बेहतरीन प्रोग्राम प्रस्तुतिकरण हो रहा है, और इन्होंने लिखा है अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल करें, तो देखिए आप में से ही जो श्रोता हैं उन्होंने पसंद किया है दुश्मन फिल्म का गीत, जिसे मैंने प्ले कर दिया है आपकी ही प्लेलिस्ट से। राहत जी की मेल हमें प्राप्त हो रही है मूसा नगर बस स्टैंड से, मोहम्मद नईम, माजदा बेगम, मोहम्मद अली हैदर, मोहम्मद फहीम और महजबी रफत हबीब जी की मेल हमें प्राप्त हुई है, और इन्होंने भी लिखा है नमस्कार मैम, आपका शो मुझे बहुत पसंद है, प्लीज अपनी पसंद का कोई भी सॉन्ग सुनवा दीजिए, तो आपको हम अपनी पसंद का सॉन्ग जरूर सुनवाएंगे, फिलहाल आ रहा है आपकी ही पसंद का ये सॉन्ग।

जी हाँ दोस्तों, मैंने देखा और आपको भी दिखाती हूँ कि मेरे हाथ में कौन सा लेटर है। और लेटर आया है दोस्ती फिल्म के गीत के लिए, गुड़िया कब तक ना हंसोगी। ये गीत सुनना चाहते हैं अंधेरी बावली मूसा नगर से माजिदा बेगम, एम नईम, एम शफिया, परवीन अली हैदर, रफत हबीब, आरिफ, सोनिया, फरोज बेगम अकबरपुर से, इकरा बेगम, शफीक, अनिसा बेगम, हमराही रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं राशिद हुसैन जी।

राशिद जी लिख रहे हैं, प्यारी सिस्टर आरजे जी को हमारा प्यार भरा आदाब। और साथ ही इन्होंने लिखा, हम दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा खैरियत से रहें, किसी भी सदाबहार गीत में हमारे नाम को शामिल करें। और इसके साथ ही मंगल जी ने लिखा है, चक 5 MD पतरोड़ा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल राही श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। और इन्होंने लिखा हुआ है कि हम आपके प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया मंगल जी। और इसके साथ ही कीर्तनपुरी गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि आप कैसे हैं जी, बिल्कुल हम बहुत अच्छे हैं और आपको सुनवा रहे हैं प्रोग्राम आपकी फरमाइश। और विविध भारती के कानपुर केंद्र से आप जुड़ गए हैं, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से इन्होंने हमें मेल किया है, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी जी जुड़े हैं हमारे साथ।

शायद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना जी लिख रहे हैं कि आरती ज्योति दीदी जी आदाब, आपको आपको भी आदाब। और इन्होंने साथ में ही नाम लिखे हैं उमाराज डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी जुड़े हैं हमारे साथ।

और इसी गीत के लिए, फिल्म दोस्ती के गीत के लिए इन्होंने लिखा है। अजीजुर रहमान जी है नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से जुड़े हैं हमारे साथ और इन्होंने मेल किया है अजीज भाई मतीन भाई शेख चंद फारूक फूल वाले सैयद खलील मुबीन भाई एम डी यासीन और मोसा करीम जी लिख रहे हैं, साथ में इन्होंने लिखा है शुक्रिया आपका। तो आपको भी तहे दिल से शुक्रिया। और रेडियो अंतरा यहाँ से मेल आया है और लिख रहे हैं आरती ज्योति जी प्लीज प्लीज प्लीज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ये मेल आई है प्रमिला सिंह, हेमा अंतरा सिंह और डोंडी लोहरा से शंकर देव जटोलिया और प्रभा हगोड़िया जी जुड़े हैं हमारे साथ। और इसके साथ ही एक पत्र और प्राप्त हो रहा है हमें नेशनल रेडियो श्रोता संघ न्यू ईदगाह कॉलोनी कानपुर सिटी से मोहम्मद अहमद रायनी, अबरार अहमद रायनी, इमरान अहमद रायनी, मंतशा अहमद रायनी, इम्जिमाम और शकीला बेगम है, मोहम्मद फतेह अली खान है, रामपाल अयार वाले, संतोष कुमार त्रिपाठी, आशुतोष और गुलशन कुमार नंदा, अनिल कुमार सयानी, सौरभ सोनवानी और आप सभी ने सुनना चाहा है राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश विविध भारती के कानपुर केंद्र से, और इसके साथ ही एक मेल हमें और प्राप्त हो रही है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह का। इन्होंने लिखा है, किसी भी गीत में हमारे नाम को शामिल करें।

या मैंने लिख रहे हैं मोहम्मद मूसा शेख जी, प्यार भरा आदाब आरती दी, आप खैरियत से हो? हमारे ईमेल को आप नजरअंदाज कर रहे हो, हमसे क्या नाराजगी है जो हमारा ईमेल शामिल नहीं कर रहे हो? दुआ में याद रखना, बहुत सारी बातें आपने लिखी हैं और आपका तहे दिल से शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। और इन्होंने लिखा है आपकी पसंद का सदाबहार नगमा सुनवा दीजिए। सनावद से है शेख मूसा मोहसिन अशोक वर्मा राजकुमार बुड़ाना जी, और बहुत सुंदर मेल इन्होंने लिखी है, साथ में उसको बहुत ही अच्छे फ्लावर से सजाया हुआ है। आपका तहे दिल से शुक्रिया। डुमराव बिहार से अस्मा परवीन, दुखना रानी, सदफ आरजू, फिल्म सिटी मुंबई से इकबाल मोगा, अफरीन मोगा, अहमद मोगा, मेरठ, रोड बुलंद शहर से उमेश गौड़।

और दोस्तों इस गीत के बाद हमारे पास जिस गीत की फरमाइश आई है उस फिल्म का नाम है एक सपेरा एक लुटेरा, ये है फिल्म का नाम। और इसके साथ ही हमें जिस ये जो मेल है या सीताराम कांगड़ा जी की एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा जी की मेल हमें प्राप्त है। दिलीप कुमार जी लिख रहे हैं कि मुझे गीत सुनवा दीजिए। आशिकी फिल्म के गीत के लिए मुदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी हैं और कमल किशोर शाह जी हैं जो जुड़े हमारे साथ। प्रोग्राम चल रहा है आपकी फरमाइश। और इसके साथ ही सीताराम कांगड़ा जी लिख रहे हैं आप हमारी मेल को भी शामिल करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। और इसके साथ जय जी लिख रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा जी, प्रोग्राम में आप एक से बढ़कर एक गीत सुनवा रहे हैं, जो किसी भी गीत में हमारे मेल को शामिल कर लेना। और होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमिन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल जी जुड़े हैं हमारे साथ। और आपसे एक रिक्वेस्ट हम भी करना चाहेंगे कि अगर आपके नामों को हम शामिल कर चुके हैं प्रोग्राम में तो प्लीज जो हमारे दूसरे श्रोता हैं उनको भी अपने नामों को शामिल करवाने का मौका दें। और फिलहाल आ रहा है

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं विविध भारती के कानपुर केंद्र से। और इसके साथ ही जो अगली फरमाइश आई है वो आई है दुल्हन वही जो पियामन भाई। इस फिल्म के गीत के लिए हमें मेल प्राप्त हो रही है मीरा सिंह जी की। इन्होंने लिखा है, नमस्ते जी, आपको भी नमस्कार। और समस्तीपुर बिहार से ये मेल हमें प्राप्त हो रही है। मीरा सिंह, ज्योति सिंह रोहतास बिहार से हैं, सोनम सिंह और अनामिका सिंह जो जुड़ी हैं हमारे साथ। और इसके साथ ही हमें जो मेल जो पत्र

वो है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार नसीम बेगम और आयशा खान, हृदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान पुत्रा, मुस्ताफा खान, राउफ भाई और शहीद भाई, गांधी बागकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर जी भी जुड़े हैं हमारे साथ और इसके साथ ही सुधाकर जाधव जी की भी मेल प्राप्त हो रही है और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही सजा करके हमें मेल लिखी हुई है। इन्होंने लिखा है, प्रेम पूर्वक नमस्कार, आपको भी नमस्कार और ये प्रोग्राम हम आपका लाइव सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है। देन आपको तहे दिल से शुक्रिया। साथ ही उन्होंने लिखा है, प्रोग्राम का प्रस्तुतिकरण बहुत ही सुंदर होता है, सभी गीत सुमधुर होते हैं। ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजी जाधव जी और प्रशांत राजी जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख और सानवी देशमुख जुड़ गए हैं हमारे साथ और अब आपको सुनवा रहे ये गीत।

इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं सुधाकर गायकवाड़ जी, लिख रहे हैं, नमस्कार मैडम जी, आकाशवाणी कानपुर कार्यक्रम में हम लाइव जुड़ गए हैं, बढ़िया गाने चल रहे हैं और किसी भी गाने में हमें शामिल करें, धन्यवाद। संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति गायकवाड़, आशा गायकवाड़, दीपांजलि गायकवाड़, दीक्षा बागमारी, शशांक बागमारी जी जुड़े हैं हमारे साथ। और इसके साथ ही हमें एक जो पत्र प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है सरोज चौक अमरावती से, और इन्होंने चिराग फिल्म के गीत के लिए फरमाइश की है। कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम है, आयशा खान है, हृदिया खान है, आसमा सालिया, शोएब खान और राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बागा कोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर जुड़ गई हैं हमारे साथ। तो हमने प्ले कर दिया आपकी पसंद का चिराग फिल्म का गीत।

के साथ उत्तम कुमार भगत जी लिख रहे हैं, आरती दीदी मेरा मेल क्या हुआ, अभी तक आपने शामिल नहीं किया। उत्तम नगर वाले का नाम बार बार शामिल किया, भाई उत्तम कुमार भगत जी का भी नाम मैंने शामिल कर लिया। देखिए पाकुड़ झारखंड

से हैं उत्तम कुमार भगत जी, श्वेता भगत, किसु तासु अर्णो आनंद, सत्यम आनंद बोहड़ा गाची पश्चिम बंगाल से हैं, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत जी, और इन्होंने धर्मात्मा फिल्म के गीत के लिए फरमाइश हमें की है। और फिलहाल जो सॉन्ग चल रहा है वो है चिराग फिल्म।

फिल्म के इस गीत के बाद हमें जो मेल प्राप्त हो रही है वो है गंज डुंडवारा यूपी से। मास्टर खेलू परवेज बेगम, इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी की। और इसके बाद हमें आके फिल्म के गीत के लिए फरमाइश लिख भेजी है परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और असलम सैफी ने। तो आप सभी को सुनवा रहे हैं आंखें फिल्म का गीत।

दोस्तों आखिरी फिल्म के इस गीत के लिए आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी जी की जो मेल है और पत्र भी है वो हमें प्राप्त हो चुका है। और ये जो पत्र आया है वो आया है कानपुर से और इसके साथ ही हमें लिख रही हैं आरती मैम जी, आपको नमस्कार। आप हमें फिल्म धर्मात्मा का गीत सुनवा दो, हम आपका कार्यक्रम अभी सुन रहे हैं और आज हमें अपने प्रोग्राम में शामिल कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही धर्म करम फिल्म के गीत के लिए भी फरमाइश आ रही है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डी कैस्ट्रो जी भी हमें मेल कर रहे हैं, जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो, पर्ल डी कैस्ट्रो, विलियस डी कैस्ट्रो जुड़े हैं हमारे साथ। और इसके बाद जो हमें अगली मेल प्राप्त हो रही है वो है राजेश होबर खेड़े की। और राजेश जी लिख रहे हैं शिवाजी नगर वडाली देशमुख से, राजेश खोबर खेड़े, शिव सागर खोबर खेड़े, इंद्राताई खोबर खेड़े। और इसके साथ ही खांडवी बुलढाड़ा से हैं दीपावली रामधाड़े, स्वराज रामधाड़े, थिलोरी दरियापुर से सुनैना। और इसके साथ ही तनुज पवन भोंडे जी की भी जो मेल है वो हमें प्राप्त हो रही है। नवाब खान वार्ली मुंबई से जुड़े हमारे साथ नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान जुड़े हैं और इन्होंने एनी सॉन्ग यानी किसी भी सॉन्ग के लिए अपनी जो मेल है वो हमें लिख भेजी है। फिलहाल ये गीत है धर्म करम फिल्म से।

0: आएगा।
1: मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी जुड़ गए हैं हमारे साथ और इन्होंने बहुत ही अलग बात लिखी है या कह सकते हैं बहुत ही इंतजार करने के बाद बहुत सारी चीजें लिखी हैं। आरती ज्योति जी, लगता है आज हमारा मेल शामिल नहीं होगा और अब इंतजार करना बेकार है, बेईमानी लगता है, किसी बात पर लग रहा है कि आरती ज्योति आज हमसे रूठी है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो मेल है उन्हें हम शामिल कर पाए अपने प्रोग्राम में। रूठने की कोई बात नहीं है। फिलहाल मीका जी की भी जो मेल है, गांधी चौक रोपर पंजाब से हमें प्राप्त हो रही है। हरदेव मीका, बलविंदर और जय तेग, इसके साथ ही मीका जी जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में हो गए हैं शामिल।

भी अब देरी नहीं होने वाली है, क्योंकि जो वक्त है वो हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और गीत सुनवाएं। और फिलहाल चलते चलते प्रशांत शिंदे जी की मेल और शामिल कर लेते हैं। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोट के जुड़े हैं हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों मुझे यानी आरजे आरती को दीजिए प्रोग्राम आपकी फरमाइश से इजाजत। नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ।

0: ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र एफएम 103.7 पर।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टेक्स

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। ख्वाबों को मुट्ठी में बटोरे वो बेख्याली में जिंदगी की राहों पर सरपट भागती जा रही थी कि अचानक राह पर पड़े पत्थर से टकरा गई। मुट्ठी में बंद ख्वाबों के जुगनू इधर उधर बिखर गए। उसका एक भला सा नाम था, लेकिन उसकी पहचान नाम से नहीं बल्कि उसके हुनर से थी।

उसके ख्वाबों के मोती राह पर गिरकर टूट टूट कर बिखर गए तो उसका दिल भी टूट गया। उसे दिल के टूटने की आहट हो गई। उसने टूटे हुए दिल से दूसरे ख्वाब बुनने शुरू कर दिए। बहुत जल्द उसके ख्वाबों की एक नई दुशाला बनकर तैयार हो गई। बस वो ख्वाबों की रेशमी दुशाला पहन रात के सन्नाटे में चांद से बतियाती अपना सफर पूरा करने लगी।

ख्वाबों की रेशमी दुशाला ओढ़े वो खेतों मेड़ों से जा रही थी, तभी उसे कहीं से रेडियो की आवाज आई। रेडियो पर बज रहा था मोहब्बत का गीत, प्यार का राग। बस उसे उस गीत से प्यार हो गया और उसके कदम ठिठक गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके ख्वाबों से भी खूबसूरत होता है प्यार का राग।

0: दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। रेडियो की आवाज की डोर पकड़े वो खेतों से बाग की ओर चल पड़ी, जहां आम और जामुन के पेड़ों के बीच इत्र की खुशबू बिखरी थी। इत्र की खुशबू में अजब सा सम्मोहन था। उस खुशबू की ओर वो बढ़ती चली गई। फिर सुबह की उगी नरम धूप सी किसी का मुस्कुराता चेहरा था। वो कोई शख्स था या था सपनों का शहजादा? बस वो उस तिलिस्मी शख्स को भर आंखों देखती रही।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनूं।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी?
2: तुमसे नहीं,

0: वो दौड़ती फुदकती तितली भौरों के पीछे भागती, कोयल सरीखी मीठी आवाज में कुछ गाती गुनगुनाती, ख्वाबों का सुंदर पिटारा लिए चली जा रही थी। नरम नरम धूप के मैदान से लगी हुई फुलवारी पर उसकी आंखें ठिठक गईं। सुर्ख रंग की पोशाक में वही वो शख्स मुस्कुरा रहा था, शायद ये वही शहजादा था, ख्वाबों वाला शहजादा।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चल, नेचुरल है
2: इसका सलूशन,
1: वो भी नेचुरल है। वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

उस शहजादे ने पलकों की पंखड़ी पर फूलों का झुरमुट धर दिया। फिर एक दिन उसने मुट्ठी में एक बीज थमा दिया। उस बीज से प्रेम का अंकुर फूट गया। सुबह के उजास में प्रेम का

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा।

ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र FM 103.7 पर। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। अब हमारा आज का प्रसारण संपन्न होता है। कल प्रातः 5:50 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र FM 103.7 पर। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। अब हमारा आज का प्रसारण संपन्न होता है। कल प्रातः 5:50 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।